एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

त्याग और सेवा से आत्मा को सच्ची संतुष्टि तथा आनंद की प्राप्ति होती है। त्याग के आनंद की अनुभूति तो सभी अपने जीवन में करते हैं। अपने लौकिक संबंधियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में तथा कष्ट सहने में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। लेकिन यदि ये त्याग परमात्मा के लिए हो तो मनुष्य को बेहद आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य परम पिता परमात्मा तथा उनके ईश्वरीय कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। वस्तुतः सेवा से हमारी तामसिक वृत्तियों का उदात्तीकरण हो जाता है। बिना दूसरे की आध्यात्मिक सेवा किए हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जो लोग दूसरों की इच्छा को तृप्त करने में अपने को लगा देते हैं, उनकी स्वयं की इच्छा स्वतः ही तृप्त हो जाती है। परमात्मा ईश्वरीय गुणों के भंडार हैं। उनसे सहज संबंध स्थापित हो जाने पर आत्मा भी गुणवान हो जाती है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्रीराम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, रमणीक स्थल चांसल दर्रा और पर्यावरण में गुलबहार पुष्प पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर शुभ प्रयाग कार्यक्रम में सुनेगा हिमाचली गीत और लोकगीत। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। सुबह 9 होगा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आज के कार्यक्रम का विषय है हाइपरटेंशन कारण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम शाह। ये कार्यक्रम 9 से लेकर 10 तक जारी रहेगा। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी। 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य सुमन। इसमें हिंदी साहित्यकार डॉक्टर शिल्पा देवी से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। 11:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल सभा। आज बातचीत का विषय रहेगा बच्चों को बताएं आत्मरक्षा के गुण, साथ ही होंगी रोचक जानकारियां। दिन में 3 प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। 1:10 से लेकर शाम 5 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। शाम 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज सुनिएगा फिल्म संगीत मेरी पसंद। गजलें आपको सुनवाएंगे शाम 6:06 पर। 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मिंजरा। इसमें आज बातचीत का विषय रहेगा वनों को आग से बचाएं। 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज फूलों की खेती बाड़ी को कैसे बनाएं फायदेमंद, इस विषय पर जानकारी साझा की जाएगी। रात 8 सुनेगा मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस देशगान 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही फिल्म निर्माता निर्देशक कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा मोहित सूरी द्वारा निर्मित फिल्मों से चुनिंदा गीत। फिल्म संगीत सुनिएगा 9:30 पर। रात 10 रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 News@9, रात 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विकविकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीये निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 17 मई है और आज का दिन इतिहास में अपनी खास जगह रखता है, तो सबसे पहले नजर डालेंगे आज विशेष पर। भारतीय खेल जगत के इतिहास में 17 मई का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन भारत के मुक्केबाजों ने साल 2010 में कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप सुरजॉय और जय भगवान ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता था। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का पुरस्कार विजेंद्र कुमार को मिला था। 1987 में आज ही के दिन सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में से संन्यास लिया था।

1749 में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म 1953 में आज ही के दिन हुआ था। इन्होंने 1970 से 1980 के दशक में कई हास्य भूमिकाएं निभाई थी। झूठा कहीं का, आंखों का तारा, दिल लगी, आशिक, लैला मजनू और अनुराधा जैसी फिल्मों में इन्होंने भूमिकाएं निभाई थी। सुनते हैं अनुराधा फिल्म का ये गीत।

मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, 1951 में लोकप्रिय गजल गायक पंकज उधास का जन्म गुजरात में हुआ था और हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्देशक श्याम रामसे का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। श्याम रामसे को उनकी विशिष्ट डरावनी शैली और कम बजट में हिट हॉरर फिल्में बनाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाज़ा, सन्नाटा, पुरानी हवेली, अंधेरा, दो गज जमीन के नीचे जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुप्रभात कार्यक्रम में। विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना और पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई तकनीकों द्वारा समाज और अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और साथ ही डिजिटल अंतर को कम करना भी है, ताकि तकनीक का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सके। कल का तार आज का फाइबर। श्रोताओं, एक जमाना था जब चिट्ठी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे और आज पलक झपकते ही सात समंदर पार अपनों से बात कर सकते हैं। आज ही के दिन 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की नींव रखी गई थी। श्रोताओं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी तार टेलीग्राफ से शुरू हुआ सफर आज 5G और सैटेलाइट इंटरनेट तक पहुंच गया है। तकनीकी का इस्तेमाल हमें दूरियां पाटने के लिए करना है, ना कि दीवारें खड़ी करने के लिए। चाहे वो गांव का किसान हो या शहर का रहने वाला, डिजिटल क्रांति का फायदा सबको मिलना चाहिए। हम और आप भी तो डिजिटल माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो आप सभी को इस दिन की मुबारकबाद। तो चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात। विश्व रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ते साइलेंट किलर यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी और वर्ष 2026 की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप में मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। श्रोताओं, सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 और उच्च रक्तचाप 140/90 मरकरी मिलीमीटर में नापा जाता है और ये अगर उससे अधिक हो तो उच्च रक्तचाप कहलाता है। श्रोताओं, वैसे उच्च रक्तचाप होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उच्च रक्तचाप को जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। भोजन में नमक की मात्रा कम कर दें, नियमित व्यायाम करें, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की सैर या योग करना चाहिए। अपने भोजन में ताज़े फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। उच्च रक्तचाप के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते, इसीलिए समय समय पर डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो ये दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। श्रोताओं, इस दिवस का सरल संदेश है, नियमित जांच कराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और श्रोताओं, आज सुबह 9 बजे आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आया है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम और आज के आरोग्यम कार्यक्रम का विषय है हाइपरटेंशन कारण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम शाह। स्वस्थ दिल, खुशहाल जीवन, हाइपरटेंशन पर नियंत्रण, जीवन को रखे सुरक्षित। और अब बारी है मनोरंजन की।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

0: हमसे सुनो।
1: मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, चलिए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी में स्थित चांसल दर्रे पर, जो कि 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा मई से नवंबर माह तक खुला रहता है और बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। चांसल दर्रा, जिसे चांसल घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से जून 2012 तक रोहड़ू और डोडरा कवार के बीच केवल एक बस चलती थी और अभी कई बसें चलती हैं। शिमला को चांसल घाटी से जोड़ने वाले दो मार्ग हैं, शिमला ठियोग कोटखाई रोहड़ू लारोट घाटी, जो कि 160 किलोमीटर का सफ़र है, और दूसरा रास्ता है शिमला ठियोग नारकंडा सुंगरी रोहड़ू लारोट घाटी, जो कि 175 किलोमीटर का सफ़र है। ये भीड़भाड़ से दूर रोहतांग पास का एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे लास्ट अनटच्ड हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर डोडरा और कवार दो बेहद खूबसूरत गांव हैं, एक शांत और सुंदर झील भी है जिसका नाम है सारू झील। चिरगांव और हाटकोटी मंदिर भी यहाँ पर हैं। और एक खास बात, यहाँ रहने के लिए कोई होटल नहीं है, सिर्फ टेंट यानी कैंपिंग की सुविधा मिल सकती है, इसीलिए रोहड़ू में रुकना बेहतर होगा। तो अगर आप चांसल दर्रा देखना चाहते हैं तो मई से नवंबर तक यहाँ आ सकते हैं। और श्रोताओं, पर्यावरण के अंतर्गत आज हम जानकारी साझा करेंगे एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय फूल के बारे में, जिसका नाम है गुलबहार। इसका दूसरा नाम डेजी है और वैज्ञानिक नाम वेलिस पेरिनिस है। ये फूल अपनी सादगी के लिए जाना जाता है और इसके कई औषधीय उपयोग भी हैं। गुलबहार के फूलों की पंखुड़ियां आमतौर पर सफ़ेद होती हैं और बीच का हिस्सा चमकदार पीले रंग का होता है। कुछ प्रजातियों के फूलों की पंखुड़ियां हल्की गुलाबी या लाल रंग की होती हैं। गुलबहार का पौधा छोटा होता है, जो ज़मीन के करीब फैलता है, और इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की मखमली होती हैं। श्रोताओं, गुलबहार के फूलों की एक दिलचस्प विशेषता ये है कि ये सूरज निकलने पर खिलते हैं और रात होते ही बंद हो जाते हैं, इसीलिए इसे डे आईज कहा जाता है और इसी कारण इसका नाम डेजी पड़ा। तो ये थी जानकारी गुलबहार के बारे में। और श्रोताओं, आज कांगड़ा के धर्मशाला नगर निगम के सभी 17 वार्डों में मतदान हो रहा है, तो आप सभी अपने मतदान का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। और कांगड़ा जिले के धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में IPL का मैच भी आज हो रहा है, तो अपनी अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाइए और मैच का आनंद लीजिए, स्टेडियम जाकर या फिर घर पर टेलीविज़न में मैच देखकर। तो सुप्रभात कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

विजय भंडारी का गाया हुआ ये लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है ऋषि कुमार ने।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
11: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर

तेरे नाम इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की और धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।

मैं होना। इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थी, अनु मलिक का संगीत था और जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। चलते चलते इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। गायक कलाकार हैं अभिजीत।

चलते चलते फिल्म के इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने, आवाजें थी अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का गीत।

हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म का ये गीत है। विशाल शेखर का संगीत, इरशाद कामिल के बोल, आवाज़ें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह की 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आज के कार्यक्रम का विषय है हाइपरटेंशन, कारण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रम शाह।

0: तेज रफ्तार जिंदगी, भागते कदम, अनगिनत जिम्मेदारियां और इन्हीं सब के बीच चुपचाप बढ़ता एक खतरा जो बिना आवाज दिए हमारे दिल, दिमाग और जीवन को प्रभावित करता रहता है, नाम है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। कई बार हम कहते हैं बस थोड़ा सा तनाव है, थोड़ी सी थकान है, समय कहाँ है खुद के लिए। लेकिन क्या यही छोटी छोटी अनदेखियां भविष्य की बड़ी बीमारी बनती जा रही है? नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आरोग्य में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रीना और आज के अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या तनाव सचमुच बीपी बढ़ाता है? क्या युवाओं में बढ़ता हाई ब्लड प्रेशर चिंता का विषय है? क्या आधुनिक जीवन शैली हमारे दिल पर भारी पड़ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है? जी हाँ, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रसिद्ध चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम शाह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आरोग्य में।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले डॉक्टर विक्रम जी, हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वास्तव में होता क्या है?
1: हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ये कहें कि दिल हमारा जब रक्त पंप करता है अपने अंदर से, तो जो हमारे रक्त की धमनियां होती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उन पे जब वो प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है, जब ब्लड रक्त धमनियों से जाती है और जो प्रेशर उनके दीवारों पे वो जोर लगाती है, उसको हम बेसिकली ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर का और हाइपरटेंशन में एक फर्क ये है कि जब एक हमारे बनाए गए एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा अगर हमारा यह प्रेशर ज्यादा हो जाता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब हम उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लाते हैं।
0: जी, आमतौर पर लोग कहते हैं कि बीपी बढ़ गया है ना, चाहे उन्हें समझ ना आ रहा हो, कुछ भी उन्हें दिक्कत हो रही हो, धड़कन तेज हो रही हो, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि बीपी बढ़ गया है। लेकिन रक्तचाप बढ़ने का शरीर में वास्तव में क्या अर्थ होता है?
1: रक्तचाप बढ़ने का आमतौर पर लोगों से सुनते हैं कि जैसे लोगों ने एक जेनरिक सा टर्म बना लिया है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो लोग कह देते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है तो उससे कह देते हैं मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या उनको कभी कोई चक्कर आ रहा है या थकावट हो जाती है, बीपी बढ़ गया है, या फिर कई बार कह देंगे हमारा बीपी कम हो गया। पर बीपी बढ़ना या घटना अगर कोई किसी लक्षण के साथ आना शुरू हो जाए, तो वह लक्षण तभी जनरली आते हैं जब ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर बीपी अपना अलग अलग अंगों पे अपने नुकसान करना शुरू कर गया होता है। पर वैसे बताया जाए कि ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर मोस्ट काफी समय एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब उसके कोई लक्षण जनरली नहीं मिलते। अगर आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो हो सकता है आप डायग्नोज हो एज एक मरीज के जिसको कि हाइपरटेंशन है।
0: तो ऐसे क्या लक्षण हैं कि मरीज को लगे कि उन्हें हाइपरटेंशन है?
1: हाइपरटेंशन के मरीजों में जनरली लक्षण जब आ जाता है, अगर बहुत हाई बीपी चढ़ गया है, मान लीजिए इनको हम हाइपरटेंसिव एक क्राइसिस बोलते हैं कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, उसमें आदमी को अलग अलग अंगों के नुकसान के लक्षण हो सकते हैं, जैसे सीने में दर्द होना हो गया, सांस फूलना हो गया, लकवा पड़ना हो गया, कोई आपको एक साइड कमजोर पड़ गई, गुर्दे के कोई नुकसान हो गए, पाँव में सूजी आना हो गया, पेशाब कम होना हो गया, तो ये सब लक्षण, या दिखने में कोई प्रॉब्लम होने लगे, ये सब इश्यूज जो होते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। पर ब्लड प्रेशर के मैक्सिमम सिम्टम्स आपको जनरली नहीं मिलेंगे, आपको जो यही मिलेगा कि अगर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते हैं तब हो सकता है कि आपको कोई लक्षण भी ना हो और हो सकता है आप एक हाइपरटेंशन के मरीज हो।
0: यानी कि आपको नियमित जांच जो है वो रेगुलर करवाते रहना
1: बहुत जरूरी है। बहुत
0: जी। और डॉक्टर विक्रम, इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है?
1: साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ब्लड प्रेशर का हो सकता है कि कोई लक्षण ही ना हो किसी मनुष्य में बहुत समय से, और धीरे धीरे करके वो हाइपरटेंसिव लेवल पे हो, मतलब उसको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है पर उसको कोई लक्षण नहीं है। अब कई सालों तक उसको कोई लक्षण नहीं है, इसी वजह से जैसे हम आमतौर पर लोगों से सुनते भी है कि डॉक्टर साहब हमने एक दिन बीपी नपवाया था और हमारा ब्लड प्रेशर तो ज्यादा आया था, डॉक्टर ने बोला कि हाइपरटेंशन है, पर हमें तो कोई लक्षण नहीं है, हमें तो कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। अब दिक्कत यही होती है, साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ही ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहने के कारण, रक्तचाप लगातार बढ़ा रहने के कारण उनके अंगों में नुकसान होना शुरू हो जाता है। उनके हृदय में नुकसान होगा, उनके मस्तिष्क में नुकसान होना शुरू होता है, उनके गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जब वह उनके आपको लक्षण दिखने शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है।
0: तो क्या कभी कभी सिर दर्द या चक्कर आना भी वीपी का संकेत हो सकता है?
1: ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बीपी के संकेत जनरली ये नहीं होते हैं। जनरली अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर एक मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है तब ये लक्षण आपको पाए जा सकते।
0: और सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए या किस स्तर के बाद इसे खतरनाक कहा जाता है?
1: सामान्य ब्लड प्रेशर हम गाइडलाइंस जो फॉलो करते हैं, हमारे 2025 में अमरीकी हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस आई है जिनको जनरली हम फॉलो करते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लेते हैं, रक्तचाप का जो वैल्यू लिया जाता है वो ऊपर वाला बीपी जो है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 से नीचे, और जो नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से नीचे। अब 120 80 ही मेन टर्म है जो कि जिसके नीचे आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मान सकते हैं।
0: जी, ये बताइए कि क्या बढ़ती उम्र के साथ बीपी का बढ़ना जो है वो एक नॉर्मल बात है?
1: उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर जल्दी देखा जाता है क्योंकि आपके रक्त की धमनियां जो होती है सख्त होती जाती है, उनमें आर्टरीज जो होती है सख्त होती जाती है, इस वजह से आपको हो सकता है कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए।
0: बिल्कुल। और आजकल अगर हमारे यूथ की बात करें, युवाओं की बात करें, तो उनमें भी हाइपरटेंशन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि ये तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या समस्याएं हो सकती हैं?
1: आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत यंग एज से देखने को मिल रही है, क्योंकि इनमें बहुत सारी इसके कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि एक तो आजकल की जिंदगी में भागदौड़ की जिंदगी में मानसिक तनाव एक बहुत मुख्य कारण हो गया है।
0: तो बीच में रुकना चाहूंगी कि मानसिक तनाव भी बीपी की वजह से ही ज्यादातर पाया जाता है?
1: मानसिक तनाव के कारण जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। मानसिक तनाव एक कारण है, जिस तरह की हमारी आजकल रहने की, खाने पीने की, सोने की शैली हो गई है, मानसिक तनाव रहता है। एक हमारे में कॉम्पिटिशन है आगे बढ़ते रहने का, जिस तरह का आज का हमारा युग हो गया है, वो एक मानसिक तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी चीजें है कि बच्चों का आजकल के यूथ का खाने पीने का ढंग,
0: बिल्कुल
1: है ना, तो आजकल का समय आप देखेंगे बहुत सारे आजकल यूथ का फास्ट फूड का जमाना शुरू हो गया हुआ है, चीजें जो खाते हैं वो पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, साग सब्जियां कम होते जा रही है, नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया है, और दूसरा व्यायाम का लेवल बहुत कम हो गया, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, और मोटापा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल होना हो गया, ये सब जितने चीजें

0: है, फिजिकल मेंटल, आप खाने की हैबिट्स हो गई और आपके एक्सरसाइज ना करने की हैबिट, ये सारी चीजें जो व्यायाम नहीं करने की चीजें, ये सब चीजें इस चीज पे असर डाल ही
1: असर
0: रही है।
1: डालती हैं जी। तो क्या आधुनिक जो हमारी आजकल जैसे अभी बात कर रहे थे आप, जीवन शैली है, खान पान है या गलत आदतें हैं, हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही हैं, और आज की ये तेज रफ्तार जिंदगी हमारे दिल और दिमाग पर किस तरह से असर डाल रही है?
0: आज की हमारी तेज रफ्तार जिंदगी, यही बता रहा था मैं आपको कि आजकल तेज रफ्तार जिंदगी में कंपटीशन का एक जो युग शुरू हो गया है, इस समय में आप देखेंगे तो मानसिक स्ट्रेस जो आदमी पे है बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा है। कंपटीशन है, हमने हर किसी से आगे निकलना है, आपके पास जॉब का स्ट्रेस है, घर में आने के बाद और चीजें रहती है। सो मानसिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एक कारण है जिससे कि हाइपरटेंशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, बाकी सब चीजें तो हमारे यही है कि सोने की आदतें गड़बड़ है, एक्सरसाइज नहीं करना और खान पान, यही सब चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल, तनाव की बात कर रहे हैं आप, है ना, टेंशन की बात कर रहे हैं, तो तनाव की वजह से भी बीपी बढ़ता है, या
0: हाँ
1: ये केवल एक आम धारणा है कि हम मानते
0: नहीं,
1: हैं?
0: इससे जरूर है कि मानसिक तनाव से स्ट्रेस हमेशा आपके हार्मोन्स लेवल्स कुछ इस तरह के गड़बड़ाता है, बढ़ाता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
1: बढ़ता है जी।
0: हाँ
1: तो डॉक्टर विक्रम ये बताइए कि क्या हर समय मोबाइल, लैपटॉप या सोशल मीडिया से जुड़े रहना भी मानसिक दबाव बढ़ाता है?
0: बिल्कुल जी, आप हमेशा अगर आप देखेंगे कि आप 24 घंटे अगर मोबाइल या लैपटॉप पे जुड़े रहेंगे, आपका दिमाग 24 घंटे
1: चलता
0: कितनी
1: रहेगा,
0: सारी इन्फॉर्मेशन
1: बिल्कुल।
0: गैदर करता रहता है, उसको रिलैक्स करने का टाइम तो मिलता नहीं, आराम तो करता ही नहीं है, तो कितनी तरह की इन्फॉर्मेशन इनपुट अलग अलग जगह से लेता है और उसमें कितना ज्यादा स्ट्रेस इकट्ठा होगा, तो ये तो रहता ही है कि आपको मानसिक तनाव तो जरूर होगा अगर आप ये सब चीजें
1: चीजें
0: प्रयोग में
1: बहुत
0: करते
1: ज्यादा
0: हैं।
1: यूज अगर
0: आपका
1: आप
0: सोने का
1: कर रहे
0: समय
1: हैं।
0: पक्का नहीं होता है, लोग बच्चे आजकल आप देखेंगे, लोग हो गए घर में, आप देखेंगे बच्चों से लेके बड़े तक भी इसी तरह
1: जी
0: चलता जा रहा है। रात के समय आप देखेंगे सब अपने अपने मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, सोने का समय नहीं है, जहां
1: बिल्कुल
0: आपने
1: नहीं
0: 10 बजे
1: है,
0: सोना है आप 12 बजे
1: सुबह
0: तक
1: उठने का
0: अपना,
1: कोई समय
0: बिल्कुल
1: नहीं है।
0: यही यही कारण है सब चीजें जो कि
1: जी।
0: रुक
1: और
0: हुआ है।
1: हमारा अगला प्रश्न भी इसी से है कि रात तक जागना या कम नींद लेना भी बीपी पर असर डालता है?
0: हाँ जी, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो, नींद कम रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ेगा, और आपका समय होता है सोने का जो कि 7 से 8 घंटे का होता है, वो आपको एक नियमित नींद लेनी बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है। तो वर्क फ्रॉम होम और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है?
0: हमने जैसे बहुत समय से देखते आए हैं वर्कआउट होम का, आप देखेंगे घरों में भी आपने कई लोगों को देखा होगा बड़े देर तक अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स में वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में 10 10 12 12 घंटे लैपटॉप्स के
1: बैठे
0: सामने
1: रहते हैं
0: बैठे
1: हम।
0: रहते हैं। अब बैठने का दिक्कत क्या होता है? बैठने का दिक्कत यह है कि आपको एक तो आराम का समय नहीं है,
1: नहीं
0: दूसरा
1: मिलता
0: आप बैठे हैं आपका व्यायाम का कोई समय नहीं है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: आप
1: ना
0: चल
1: खान
0: नहीं रही
1: पान के
0: आप,
1: लिए
0: हाँ
1: आपके
0: जी
1: पास टाइम
0: आप
1: है।
0: बैठे बैठे हैं, बैठे बैठे ही आप जब भी आप खाते हैं तो आप बैठ के खा रहे हैं, आपका सिर्फ खाना जा रहा है, आपका व्यायाम बिल्कुल नहीं है, आपकी मानसिक शांति बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलता रहेगा तो बीमारियां बढ़ती
1: बढ़
0: ही
1: जी
0: रहेंगी।
1: बिल्कुल। और वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी यूथ है, वो अनजाने में ऐसी ही जीवन शैली अपना रहे, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि खाने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, तो क्या मतलब ये सब समस्याएं भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं?
0: बिल्कुल जी, अगर इसी तरह से हम बोला जाए कि जिसमें बिल्कुल व्यायाम ना हो, उस तरह की जिंदगी अगर आप काट रहे हैं और जिसमें मानसिक तनाव आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, जिसमें एक ब्लड प्रेशर एक चीज है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां और भी हैं।
1: जी। तो क्या सफलता और प्रतियोगिता की दौड़ में मानसिक तनाव को बढ़ाकर हाइपरटेंशन को जन्म देती है?
0: जरूर, यही कहना है कि अगर आप इसी तरह की जीवन शैली अपनाते रहेंगे, पुराने समय में देखते थे कि बहुत ज्यादा इस तरह की हाई रे मतलब हाई एंड रेस पे आपकी जीवन शैली नहीं चलती थी, आप एक शांतिपूर्ण
1: शांति
0: जिंदगी
1: जी
0: जीते
1: जी
0: थे, आप अपने समय पे सोते थे, समय पे खाते थे,
1: अच्छा खान पान
0: अच्छा
1: लेते
0: खान पान
1: थे
0: होता
1: जी।
0: था, तब आपकी इतनी ज्यादा आपको लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं मिलती थी। आज के समय में हमारी जीवन शैली आधुनिक हो गई है, पर आधुनिक के साथ में बहुत अत्याधिक प्रॉब्लम्स के साथ भी शुरू हो गई है,
1: बीमारियों से ग्रस्त हो गई है
0: बीमारियों
1: ये
0: से
1: कह सकते
0: ग्रसित हो गई है।
1: हैं।
0: तो क्या ये आधुनिक जीवन शैली क्या हमें कुछ मदद कर रही है? मेरे ख्याल से हमें और नुकसान ज्यादा
1: बीमार
0: पहुंचा
1: कर
0: रही है,
1: रही है
0: बीमारियों के पास ज्यादा ले जा रही है, इसके बजाय कि हमें सुखी करे या स्वस्थ रखे।
1: जी। तो डॉक्टर, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अकेले होते हैं या बहुत टेंशन में होते हैं, है ना, या बहुत इमोशनल टाइप के लोग भी होते हैं, तो ये सब चीजें भी बीपी बढ़ाने का काम या कारण जो है वो हो सकती हैं?
0: हाँ, क्योंकि ये सब चीजें इस तरह की है कि अगर आप अकेले हैं, आप किसी से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर सकते, आप उनसे बातें नहीं कर सकते, तो आप में नेचुरली एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर में कुछ चीजें ये जोड़ दे, आपको बीपी के मरीज बनाने में कुछ फर्क डाले।
1: खान पान की आप बात कर रहे हैं कि अच्छा

0: खान पान आजकल नहीं है, है ना, तो खान पान का भी ब्लड प्रेशर पर कितना प्रभाव पड़ता है?
1: खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। खान पान में आपका सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो यह है कि आजकल के समय में आप देखेंगे कि जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि आपका फास्ट फूड की जनरेशन आ गई है, आपके पास बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट, मतलब कि आपके फैट की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चर्बी की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इस तरह की शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया हुआ है। तो खाने का पैटर्न है, अगर आप उसमें ये बोलें कि अगर आपके पास फल फ्रूट सब्जियां आप नहीं ले रहे हैं तो आपका डाइट जो है वो बहुत गलत तरीके से आप ले रहे हैं, उसको आपको सुधारना पड़ेगा।
0: जी जी, नमक की आप बात कर रहे हैं ना, और नमक को ही हाई बीपी का कारण माना जाता है, या कहते हैं लोग कि ज्यादा नमक खा लिया बीपी हाई हो गया, तो ये सच है क्या?
1: हाँ जी, नमक के साथ हाई ब्लड प्रेशर को जोड़ा गया है, और ये देखा भी गया है कि जब आप अपना नमक का सेवन कम करते हैं, या सोडियम जिसको आप बोलते हैं एक लैंग्वेज में, अगर आप उसको कम इस्तेमाल करते हैं तो देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जनरली आपका कम होता है। तो एक नियमित रूप में हम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए एक खाने में जो आप बदलाव कर सकते हो यह है कि अपना नमक का सेवन जरूर कम करें।
0: बिल्कुल, और यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक जो सामान्य व्यक्ति को है, दिन भर में कितना नमक लेना चाहिए?
1: सामान्य व्यक्ति को अगर देखा जाए तो अगर हम ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ हाइपरटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लगभग लगभग 5 ग्राम से नीचे नीचे एक दिन का नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि लगभग एक छोटे चम्मच के बराबर नमक पूरे दिन का
0: एक छोटा चम्मच
1: जो आपका नमक होता है, जिसको आप इंग्लिश में टीस्पून बोल सकते हो, उतने के बराबर अगर नमक है आपका पूरे दिन में तो उतना ही इस्तेमाल करिए, जो कि लगभग 5 ग्राम से नीचे रहेगा।
0: जी, और क्या बाहर का खाना और फास्ट फूड युवाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है? आपने जैसे पहले भी कहा,
1: हाँ जी,
0: तो हमें अपना खाना जो है वो बिल्कुल सादा सिंपल लेना चाहिए, या
1: हमें जितना भी हो सके खाने में, हमारा जो खाने का प्लेट होता है, अगर आप बात करें तो खाने के प्लेट में हमारे पास सवेर से लेकर शाम तक आपका फल और सब्जियां, ये हरी सब्जियां, ये सबसे ज्यादा हमारे खाने में जरूर इसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज है, फल और सब्जियां, जो कि हमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह, बहुत सारे अलग अलग तरह के छोटे छोटे मिनरल जिनको हम बोलते हैं, ये सब हमें प्रदान करती है, और इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है।
0: जी, तो चाय और कॉफी पीने से भी बीपी बढ़ सकता है?
1: चाय और कॉफी पीने से कुछ लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर जैसे कॉफी के साथ बहुत लोगों का जुड़ाव है कि कॉफी पी लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या कुछ लोग उस सेंस में भी लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा,
0: या चाय के लिए भी ऐसा
1: कहते हैं, पर बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं, पर ऐसा अभी तक कुछ इतना पक्का नहीं पाया गया है कि हाँ कि इससे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
0: तो कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से बीपी कंट्रोल रहता है?
1: ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए आपको मेन जो चीजें लेनी है वो यही है कि परहेज ज्यादा है, और जो लेने वाली चीजें हैं उनमें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फल और हरी सब्जियां, ये ही मेन चीज है, बाकी आपको अपना नमक कम करना पड़ेगा। कुछ जो स्टडीज हुई है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप पोटेशियम अगर सप्लीमेंट करते हैं, पोटेशियम वाली चीजें हैं वो सप्लीमेंट करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर कुछ कम किया जा सकता है, पर पोटेशियम का ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं उनमें किडनी की समस्याएं भी होती है, या कुछ इस तरह की दवाइयां उनकी ब्लड प्रेशर की चल रही होती हैं कि जो कि पोटेशियम को बाहर निकलने नहीं देता, पोटेशियम को शरीर में रोक के रखता है। तो अगर आप कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि पोटेशियम की चीजें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले कि कहीं मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मैं पोटेशियम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बीपी कम करने के लिए, पता लगे कि वहाँ पे पोटेशियम और ज्यादा इकट्ठा होकर आपको कुछ और ही प्रॉब्लम।
0: जी जी, तो क्या पानी कम पीने से भी रक्तचाप का कोई संबंध है?
1: पानी कम पीने से धमनियां जनरली सुकड़ जाती है, सुकड़ने की वजह से हो सकता है हल्की फुल्की, पर इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्की फुल्की चीजें हो सकती है।
0: वैसे नॉर्मली तो एक दिन में हमें 8 से 10 गिलास पानी
1: पीना ही चाहिए लगभग।
0: खान पान का समय अनियमित यानी कि टाइम नहीं है, सुबह लेट खा रहे हैं, दिन में लेट खा रहे हैं, तो इसका भी नुकसान है हमारे स्वास्थ्य के लिए?
1: हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे चलता है, हमारा पूरा जो सिस्टम है, अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में इस तरह से चीजें चलती है कि आपका हर एक चीज का एक समय होना चाहिए, अगर आप नाश्ता करना है तो इस समय होना चाहिए, दिन का खाना रात का खाना, उस तरह से जिस तरह से हम पुराने समय से बोलते आए हैं कि आपका नाश्ता
0: राजाओं की तरह
1: होना चाहिए, दिन का खाना थोड़ा हल्का और रात का खाना बिल्कुल ही हल्का होना चाहिए, पर आज के समय में उल्टा हो गया है कि हमारे बच्चों को आप देखेंगे तो रात को, और स्पेसिफिकली आजकल के टाइम में जब आपके पास इतनी सारी सुविधाएं आ गई है, कभी भी अब रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी खाना मंगा लेते हैं, मंगाने में आजकल तो आप आराम से मंगा सकते हैं,
0: वही बच्चे जो सुबह फिर उठने में आनाकानी करेंगे तो ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो जाता है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल वही

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए डाले जा रहे वोट। 3,60,000 से अधिक मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग। नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज शाम तक, जबकि 4 नगर निगमों के मतों की गिनती 31 मई को होगी। किन्नौर जिला में ठोस कचरा प्रबंधन पर सक्रियता से किया जा रहा है कार्य। केंद्र सरकार के नियमों की दी जा रही जानकारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में आरसीबी और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। शहरी निकायों में 449 में से 439 पदों के लिए 1,147 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 196 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शहरी निकाय चुनाव के लिए 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के बाद आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। मंडी जिला में आज शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, जो तो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेज धूप को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार जिले में कुल 63,112 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए 90 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 538 अधिकारी कर्मचारी और 180 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आज नगर निगम के 14 वार्डों सहित नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर और करसोग में मतदान हो रहा है। नगर निगम मंडी में सबसे अधिक 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया आज सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुई। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सिरमौर जिला में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुल 40,133 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 20,138 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 स्थित बूथ नंबर 2 में सुबह सबसे पहले परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने नगर परिषद नाहन में भाजपा की जीत का दावा किया।
2: नाहन में स्पष्ट मुद्दा है, 3.5-4 साल में कांग्रेस ने नाहन के लिए एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया और जनता ने मन बनाया है नाहन में एंटी कांग्रेस वोट करने का। ऐसे में और भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ जनता का रुझान है।
0: सोलन नगर निगम के 17 वार्डों के चुनाव के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आज सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। नगर निगम सोलन में कुल 34,147 मतदाताओं में से 17,274 पुरुष तथा 16,872 महिला मतदाता हैं, जबकि एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। जनजातीय जिला किन्नौर में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर

0: सुमन नेगी ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के 1 अप्रैल 2026 से लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किन्नौर में फाउंडेशन के 3 MRF केंद्र पूह, सांगला और पोवारी में संचालित हैं, जहां विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के सहयोग से ठोस कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: हीलिंग हिमालय फाउंडेशन की टीम होटल, होम स्टे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को भी स्वच्छता, कचरा पृथकीकरण और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। सुमन नेगी ने बताया कि संस्था प्रशासन और साड़ा के साथ मिलकर समय समय पर सफाई अभियान भी चलाती है। हाल ही में सांगला होली में क्षेत्र में सफाई अभियान आयोजित किया गया था, जबकि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों और हिमालयी क्षेत्रों से एकत्रित कचरे को MRF सेंटर तक लाया जाता है, जहां उनका पृथकीकरण कर आगे रिसाइकिल किया जाता है। इसका उद्देश्य कचरे को सर्कुलर इकोनॉमी में लाना है और नदी नालों व खुले क्षेत्रों में डंपिंग कम करना है। सुमन नेगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कचरा केवल प्रशासन या किसी संस्था की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की डंखर पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी एकता और तालमेल की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्पीति के माने योगमा गांव निवासी अशोक के परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: जानकारी के अनुसार तंजिन छोडुन को प्रधान, सोनम छोकित को BDC सदस्य और सोनम आंगमो को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत ने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों के लिए विश्वास के साथ चुना है। इस फैसले की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग पंचायत की एकजुटता और परिपक्व सोच की सराहना कर रहे हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि आपसी सहमति का बनना गाँव की एकता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ग्रामीणों का मानना है कि जब समाज मिलकर निर्णय लेता है तो विकास और सामाजिक सौहार्द की राह और मजबूत। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के तहत विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी सचिन ठाकुर ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों पर कुल 1,680 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद पर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि उप प्रधान पद के लिए 8 उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले जीत दर्ज की है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर सर्वाधिक 1,657 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिले में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज RCB और पंजाब किंग्स के बीच IPL का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में RCB 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। धर्मशाला में कल होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में 4 नगर निगम सहित 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान आज। अमर उजाला, दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक ऐसी सुर्खी है, शहरी निकायों के लिए मतदान आज, जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, सत्ता के सेमीफाइनल के लिए मतदान आज। हिमाचल दस्तक का कहना है 22 मई को होगी कैबिनेट बैठक। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बढ़ने लगी गर्मी, मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री पर पहुंचा पारा, 21 तक मौसम साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए डाले जा रहे वोट, 3,60,000 से अधिक मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग। नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज शाम तक, जबकि 4 नगर निगमों के मतों की गिनती 31 मई को होगी। किन्नौर जिला में ठोस कचरा प्रबंधन पर सक्रियता से किया जा रहा है कार्य, केंद्र सरकार के नियमों की दी जा रही जानकारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में आरसीबी और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम का शेष भाग।
4: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
5: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी। आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
3: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आरोग्यम का शेष भाग। डॉक्टर साहब आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आरोग्यम में। बहुत से लोग डॉक्टर गुस्सा करते हैं, है ना, एकदम से गुस्सा करेंगे, तो ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों में भी हाई बीपी का खतरा ज्यादा होता है उनमें?
3: ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई, इसको दोनों तरीके से जोड़ते हैं लोग। कई लोग बोलते हैं कि इनको गुस्सा बहुत आता है,
2: हाँ, तो इनका
3: ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, या दूसरा आप इस तरह से कह लीजिए जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो
2: गुस्सा
3: बीपी हो सकता है। पर ये ऐसा नहीं है, गुस्सा आना एक आदमी के अपने मानसिक तनाव का एक प्रॉब्लम हो सकता है, पर ब्लड प्रेशर से इसका जल्दी कोई लेना देना नहीं है। बीपी का गुस्से से जल्दी कोई ऐसा लेना देना नहीं,
2: गुस्से का लेना देना नहीं है। और आजकल लोग आराम करने के बाद भी थका हुआ फील करते हैं कि थकान है, पूरा दिन चुस्त दुरुस्त नहीं रहते हैं, तो क्या ये बढ़ते हुए तनाव का एक संकेत है?
3: तनाव का जरूर संकेत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं मिल रहा हो, और जिस तरह से मैंने आपको बोला रात को प्रॉपरली नहीं सोना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, ढंग का खान पान नहीं करना, प्रॉपर व्यायाम नहीं करना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, अगर ये सब नहीं कर रहे तो हो सकता है कि थकान, और थकान के कारण अगर बहुत ही ज्यादा किसी को थकान हो रही है तो मेरा परामर्श तो ये रहेगा डॉक्टर के पास जाइए और एक बारी अपना चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि थकान होने के कारण सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं है, थकान होने के कारण और भी कई चीजें हो सकती हैं, उनके लिए जरूर ध्यान देना चाहिए।
2: तो जैसे अभी यही बात चली है तो आप बताएंगे कि थकान ज्यादा रहती है या कौन से चेकअप करवाने चाहिए उन्हें?
3: थकान अगर ज्यादा रहती है तो हमारे देश में इस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, खून कम होना, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो अगर किसी का खून कम है तो वो भी एक थकावट का लक्षण दिखा सकती है। तो मेरा परामर्श तो ये रहेगा कि अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले तो अपना खून चेक कराइए, उसमें कहीं आपका खून का लेवल ही तो नहीं कम है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे यंग बच्चे हैं और यंग जनरेशन है, इनमें ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो बाकी लक्षण और भी चीजें में हो सकती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम्स हो, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम्स, इनमें भी थकावट आप आदमी महसूस कर सकता है
2: जी। और टेंशन कम करने के लिए आप कौन सी आसान आदतें लोगों को या बताना चाहेंगे कि कौन सी आदत अपनाकर आप अपनी टेंशन कम कर सकते हैं?
3: टेंशन कम करने के लिए तो हमारा परामर्श हमेशा रहेगा कि स्वस्थ खाइए और योग जरूर करिए। आजकल के समय में योग का एक बहुत बड़ा हाथ है, अगर आप समय निकाल सकते हैं सवेरे तो योग और मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यायाम भी जरूरी है, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग भी, चलने फिरने का भी आप कोशिश करिए, पर योग पे जरूर ध्यान दीजिए, वही आपका मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकता
2: है। लोगों के पास अगर योग के लिए या व्यायाम के लिए समय नहीं है तो उन्हें किस तरह अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए कि बीपी या टेंशन ना हो?
3: दिनचर्या बनाने का समय यही रहेगा, अपने समय पे उठिए सवेरे, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक करने का, कुछ एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही सकते हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं। बाकी अगर आप बस आप मान लीजिए कि आपको लगता है ये भी समय नहीं है तो कम से कम इतना तो करिए कि अपना खाने पीने का ध्यान रखिए और समय पे सोना, हल्का सा व्यायाम और खाने पीने का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। और समय समय पे सबसे बड़ी बात है, समय समय पे अपना जांच जरूर कराइए, ताकि अगर आपको ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की समस्या है तो जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ा जा सके।
2: जी, नियमित जांच की आप बात कर रहे हैं, तो किन लोगों को नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए? सभी लोगों को या जिन्हें कोई समस्या लगती है या बीपी की है या कोई टेंशन है? या
3: नियमित जांच हर एक उनकी होनी चाहिए जिनको कोई लक्षण अगर कुछ महसूस होते हैं, जिस तरह मैंने बोला अगर किसी को लगता है कि जब ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बहुत हाई उस पे पहुंच जाता है, अगर उस तरह के लक्षण जिस तरह से मैंने पहले बताया कोई सीने में दर्द की समस्या, सांस की दिक्कत, कुछ और दिक्कतें हो रही है, या फिर जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, जिनके माँ बाप या किसी में ब्लड प्रेशर की समस्या रही हुई है, आपको शुगर की समस्या है, आपको और कुछ इस तरह की दिक्कतें रह रही हैं, तो मेरे ख्याल से एक नियमित जांच आपको करा लेनी चाहिए बीच बीच में।
2: जी, और डॉक्टर ये बताइए कि क्या फिट दिखने वाला व्यक्ति भी बीपी का मरीज हो सकता है?
3: जरूर जी, तभी इसलिए इसी को साइलेंट किलर कहते हैं, तभी अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट आदमी भी है, बहुत स्वस्थ दिखने वाला
2: आदमी, अच्छा वो खान पान लेता है, अच्छी जीवन शैली अपनाता है, वो भी बीपी का मरीज हो सकता है।
3: हाँ, क्योंकि हम यही देखते आते हैं कि कई लोग हमसे यही पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम कैसे होगी जब हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जब उनसे पूछते हैं तब वो बताते हैं कि हमें डॉक्टर ने किसी समय बताया था कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पर हम तो अपना ठीक रखते थे, बीपी तो हमने चेक नहीं कराया पर हम ठीक रहते थे। पर यही दिक्कत है कि अगर स्वस्थ दिखने वाले आदमी में भी उनमें लक्षण तो कोई नहीं है,
2: कोई नहीं
3: पर ब्लड प्रेशर हो सकता है उनको हाइपरटेंशन के लेवल पे आ गया है, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा ही रहता है, उन्होंने कभी दिखाया नहीं, इलाज कराया नहीं, अब वो सडनली किसी और प्रॉब्लम के साथ एकदम से आ जाए।
2: और अगर फैमिली में किसी को बीपी है, शुगर है, तो ये अगली पीढ़ी को भी होने का खतरा है।
3: बिल्कुल, ये हो सकता है पॉलीजेनेटिक से रिलेटेड भी रहता है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो सकता है।
2: और घर पर बीपी मॉनिटर करना कितना जरूरी है?
3: घर पर बीपी मॉनिटर करना जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब अस्पताल में जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, तो उस टाइम आदमी को यही लगता रहता है कि हो सकता है मेरा बीपी ज्यादा आएगा, हो सकता है मेरा बीपी ज्यादा है, कुछ स्ट्रेस का रहता है, तो उसको उस टाइम में उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाता है, उसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि आपको घर में मॉनिटर करना कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर वहां ज्यादा हो और घर में आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो। पर यह भी जरूरी है कि मान लीजिए कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है और मैं दवाइयों पे हूं या मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आप अपना बीपी बार बार देखते रहिए, तो अब बार बार अस्पताल जाना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, तो बेहतर यह रहता है आप घर में नापते रहेंगे तो एक एवरेज आपका एक बीपी का आपको एक आइडिया लग जाता है।
2: जी, तो घर पर बीपी चेक करने का क्या तरीका है?
3: घर पे बीपी चेक करने का आपके पास जो तरीका होता है वो ब्लड प्रेशर आजकल ऑपरेटर्स जो आते हैं, आपके बीपी नापने वाले जो मशीन आते हैं, तो अब घर में जो नापने वाला मशीन है उसमें आपको आसान रहेगा कि अगर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आते हैं जिसमें कि आप बटन दबा के ही बीपी वो नाप लेते हैं, वो वाला मेथड आपको ज्यादा प्रेफरेबल, मतलब कि आपको ज्यादा आसान रहेगा। कुछ ब्लड प्रेशर मशीन ऐसे भी होते हैं जिनको हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं, जिनमें कि आप पूरे दिन भर और रात का भी बीपी आप नाप सकते हैं, पर वो कुछ मरीजों के लिए ही है, जो हमारे पास इतने आसानी से सुविधा वह नहीं मिलती है। तो बेहतर ये रहेगा कि अपने घर में ब्लड प्रेशर अपने

0: नॉर्मल आप मशीन मंगा के रखिए जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, उसी से आप नापते रहिए तो ज्यादा बेहतर है
1: जी। और डॉक्टर विक्रम ये बताइए कि एक बार बीपी बढ़ गया किसी आदमी का बढ़ गया, तो क्या वो हमेशा के लिए वो बीपी का मरीज रहेगा?
0: इस पे कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब डिपेंड ये उस चीज पे भी रहेगा कि आपका बीपी कितना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए कि आपका 130 और 80 है या 130 90 से नीचे रह रहा है और आपका उस टाइम में आपने एक ही रीडिंग ली है, तब तो बोलना मुश्किल है। पर अगर आपका मल्टीपल अलग अलग रीडिंग भी उससे ज्यादा आ रही है, तो हो सकता है आप कुछ अपने जीवन में सुधार करके, अपने डाइट को सुधार के और अपना वजन घटा के, व्यायाम करके, हो सकता है कि कुछ लेवल तक कम आ जाए। पर ये हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि आप दवाई से,
1: क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत समय से बीपी की दवाई खाते ही रहते हैं, रेगुलर वो खाते हैं, अगर वो ना खाएं तो उन्हें बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं, तो वो उन्हें क्या खाते ही रहनी पड़ती हैं दवाइयां?
0: जी हाँ, इस पे अगर मेरा आप व्यू ले तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो दवाइयों पे अगर वो ठीक से कंट्रोल है उनका, तो उनको दवाई अपना रेगुलर लेना चाहिए। क्योंकि दवाई कम करने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, मतलब दवाई कम करने का हमारा कोई फायदा नहीं है। दवाई कम करके अगर हम ये सोचें कि हमारे दवाइयों का नंबर कम हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर उससे बढ़ गया, तो नुकसान हमारा बीपी से है, हमारे गोलियों से नुकसान नहीं है।
1: और एकदम से अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो एकदम तुरंत हमें क्या करना चाहिए?
0: किसी का भी ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए तो आपको नियर बाय जो भी आपका सबसे पास में स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाइए। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से मैंने पहले बताया, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, एक लेवल ऑफ बीपी से ऊपर आपका बीपी चला गया है, तो आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको सडनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एकदम से, जिसमें कि आपको पैरालाइज हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, हार्ट फेलियर की समस्या आ सकती है, गुर्दा काम करना बंद कर सकता है, तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको कोई एकदम से आप ना कहीं आप नपवाते हो ब्लड प्रेशर और कोई बोलता है कि आपका बहुत ज्यादा बीपी आ, तो आप जो भी आपके पास में स्वास्थ्य केंद्र है वो जरूर जाइए और डॉक्टर को दिखाइए।
1: तो पता कैसे लगे कि बहुत ज्यादा एकदम से बीपी बढ़ गया?
0: मैंने आपको पहले बताया, अगर बीपी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई लक्षण है, लक्षण वही रहेंगे। अगर आपके तीन अंगों में अगर कुछ प्रॉब्लम रह रही है, उस तरह कुछ भी लक्षण आते हैं और आप बीपी नपवा रहे हैं, बीपी आपका बढ़ गया, तो आप जरूर आसपास दिखाइए जहां पे भी जा सकते
1: हैं। जी, और बीपी बढ़ने से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: बीपी बढ़ने से हृदय में आपका जो, ये मान लीजिए कि आपका अगर रक्तचाप बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बेसिकली आपका जो आर्टरीज हैं या रक्त की धमनियां हैं उसमें प्रेशर बढ़ना है। अगर आपका आगे से प्रेशर बढ़ गया है तो हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए। तो जितना जोर हार्ट लगाएगा उस ब्लड को, अब रक्त को आगे बढ़ाने, क्योंकि आगे आपका नेचुरल ब्लड प्रेशर, अब जब आप हाइपरटेंशन के लेवल पे चले जाते हैं तो आगे जब प्रेशर आपका बहुत ज्यादा है तो पीछे से उसको हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ ये रहता है कि समय के साथ साथ हार्ट को इतना जोर लगाना पड़ता है कि हार्ट में आप एक ढंग से बोल सकते हैं कि कुछ सूजिश तो नहीं बोलेंगे उसको, हार्ट के जो मसल होते हैं वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। धीरे धीरे हार्ट की और समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि आपको हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, हार्ट फेलियर की समस्याएं आ सकती हैं, और भी कई समस्याएं हार्ट की रिलेटेड टू हाइपरटेंशन आ सकती
1: है। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।
0: जरूर
1: जी। और किडनी और मस्तिष्क पर क्या इसका असर पड़ता है?
0: किडनी और मस्तिष्क पे ये रहता है, अगर बहुत समय तक आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रह रहा है तो मस्तिष्क में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, हम जिसको पैरालाइज या अंग्रेजी में हम जिसको बोलते हैं स्ट्रोक अपने मेडिकल टर्म में।
1: अच्छा।
0: अब स्ट्रोक में दो तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं, या तो नस आपकी बंद हो सकती है या फिर नस आपकी फट सकती है, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि एक आदमी थे, उनको बीपी था और एकदम से बेहोश हो गए, अस्पताल ले गए तो उनके दिमाग में खून की नस फट गई थी।
1: कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे डॉक्टर की नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है।
0: नाक से ब्लीडिंग जल्दी जोड़ी जाती है, पर जल्दी जो नाक की ब्लीडिंग होती है वो उसके कारण और भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर
1: बीपी कारण नहीं हो सकता।
0: बीपी के कारण जोड़ा जाता है पर बीपी के कारण जल्दी होता नहीं है, वो जल्दी कुछ ना कुछ और भी कारण हो सकते हैं।
1: और किडनी पर क्या असर?
0: किडनी पे ये असर होता है, किडनी पे इतने समय से अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, किडनी के आपके सेल्स होते हैं उन पे डैमेज रहता है, और अगर वो होता है तो धीरे धीरे आपकी किडनी जो होती है खराब होती जाती है।
1: डॉक्टर विक्रम ये बताइए कि क्या हाई बीपी और डायबिटीज का भी कोई गहरा संबंध है आपस में?
0: जल्दी देखा जाता है कि जो डायबिटिक मरीज होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या भी पाई जाती है।
1: और कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी साथ मिलकर खतरा बढ़ाते हैं?
0: बिल्कुल, क्योंकि बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट है, बहुत ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो वो भी अलग अलग जगह आपके जितने आपकी नसें हैं उनमें नुकसान पहुंचा रहा है, आपके दिमाग पे, हार्ट पे, किडनी पे, सब जगह नुकसान पहुंचा रहा है। उसके साथ साथ में अगर आप बस आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जिन जिन जगह नुकसान ब्लड प्रेशर पहुंचाता जा रहा है वहां पे आपके पास नसें जो होंगी वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और वो धीरे धीरे करके नसें आपकी नुकसान बंद हो सकती हैं और आपके शरीर को नुकसान हो सकता है
1: जी। और आंखों की रोशनी पर भी हाई ब्लड प्रेशर या उक्त रक्तचाप का
0: हाई ब्लड
1: असर
0: प्रेशर
1: पड़ता
0: से आपके आंखों की नसों में भी खराब हो सकती है, जिससे कि आपकी नजर भी जा सकती है।
1: ज्यादातर कहा जाता है कि मधुमेह के या डायबिटिक जो रोगी होते हैं उनकी उन्हें ज्यादा आंखों
0: उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर में थोड़ा कम देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर का जो मेन आपका जो दिक्कतें आती हैं वो जनरली आपके मस्तिष्क पे, गुर्दे पे और हार्ट पे रहती है, आंख में लगभग थोड़े कम ही
1: कम रहती है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन के लक्षण उनके साथ अलग हो सकते हैं?
0: नहीं,
1: ये सेम ही रहेंगे?
0: सेम ही रहते हैं उनके।
1: ठीक है, ठीक है। और क्या गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी बहुत सी महिलाओं में हो जाता है, तो ये उस समय क्या खतरनाक हो सकता है?
0: हाँ जी, गर्भाशय महिलाओं में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं इनमें अगर बीपी ज्यादा है तो ये एक आप कह सकते हैं एक अलार्म की घंटी की तरह रखिए कि आपको अगर किसी को बीपी ज्यादा है, पाँव में सूजिश आनी शुरू हो गई, ये एक इमरजेंसी है, उन्हें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और माँ को भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है।
1: और तो ज्यादातर जब प्रेगनेंसी में महिलाओं को हाई बीपी की तो समस्या रहती ही है।
0: इसमें ऐसे ही देखा जाता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बीपी की समस्याएं प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकती हैं, जो कि जिनको प्रेगनेंसी पहले भी हाइपरटेंशन के मरीज थे, अब प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के दौरान भी चला। फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले हाइपरटेंशन में नहीं था पर अब उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हो गई। अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी हो गई है चाहे पहले की भी थी, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत ज्यादा
1: नुकसान हो सकता है। डॉक्टर विक्रम, बुजुर्गों को बीपी के मामले में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बुजुर्गों को बीपी के मामले में भी उसी तरह के ध्यान रखने पड़ेंगे, अपना नियमित जांच कराते रहिए
1: जी। कई बार बुजुर्ग जाना भी नहीं चाहते, चेक नहीं करवाना चाहते।
0: हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा ये जरूर है कि हम लोग ये लेते हैं कि उम्र तो इतनी हो गई है तो चलो इतना ब्लड प्रेशर का चल पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कि चल पड़ेगा वाला ब्लड प्रेशर जितना बुजुर्ग आदमी भी होंगे उनमें भी अगर बीपी ज्यादा है तो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और जिस तरह की समस्याएं आपको मैंने बताई जो मस्तिष्क में, हार्ट में है, जो आपकी जवान लोगों में होती है वो बुजुर्गों में भी उतनी ही हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और हाई बीपी पूरी तरह से ठीक हो सकता है या केवल इसे कंट्रोल या नियंत्रित ही किया जा सकता है?
0: ज्यादा समय हाई बीपी को आपको कंट्रोल ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों में धारणा ये रहती है कि हम कुछ इस तरह की पद्धति अपनाएं, कुछ उस तरह का व्यायाम करें कि खत्म ही हो जाए, हमारे देश में बहुत ज्यादा,
1: या कई बार मरीज जो है वो अपने नुस्खे भी अपनाना शुरू कर देते हैं, बहुत से
0: घरेलू नुस्खे
1: करते हैं, तो ये भी खतरनाक रहता है?
0: बिल्कुल। अगर आपने जो व्यायाम करना है, अपने खान पान का अपना ध्यान रखना है, वो सब आप जरूर रखिए, पर कृपया करके अपनी दवाइयां मत छोड़िए, दवाइयां चलाते रहिए
1: और घरेलू नुस्खे भी ना।
0: हाँ, घरेलू नुस्खे आपको जो करने आप करते रहिए, पर कृपया करके दवाई मत छोड़िए, आपका बीपी कंट्रोल रहना ज्यादा जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल, यानी कि दवाई छोड़ना भी खतरनाक हो सकता है और घरेलू नुस्खे दवा का इसमें कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि अभी आपने
0: ज्यादातर नहीं
1: है जी। तो क्या मुझे कोई लक्षण नहीं है इसलिए मुझे बीपी नहीं है, ये सोच गलत है कि मुझे कोई लक्षण ही नहीं आ रहे, सिम्टम ही नहीं है बीपी बढ़ने के?
0: बिल्कुल जी, ये बहुत गलत धारणा है लोगों की, और ज्यादातर यही धारणा हमारे आप देखेंगे हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यही देखते हैं अस्पतालों में, कि लोगों को जब आप पहली बार बताते हैं अरे आपका ब्लड प्रेशर तो बड़ा हाई है, आप दवाई नहीं खाते, उनका यही धारणा रहती है कि ये बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं हमने डॉक्टर साहब दवाई नहीं शुरू करनी क्योंकि हमें कोई लक्षण ही नहीं है।
1: बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे दवाई नहीं खानी क्योंकि ये रेगुलर खानी ही पड़ती है।
0: और ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मना करने के ऊपर ज्यादा आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हम हॉस्पिटल आ गए, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इस वजह से हमारा शायद ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, पर और उनका ऐसा नहीं है, उनका बीपी बहुत ज्यादा जगहों में बताया जाता है कि ज्यादा है, पर वो उस चीज को मानने को
1: कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं,
0: मान नहीं पाते, तो वो धारणा गलत है। आपको जितना जल्दी हो सके अगर आपका बीपी ज्यादा है तो ढंग से दिखाइए और उसका इलाज कराइए कि तभी ये एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे करके अंदर से ही सब कुछ खत्म करता
1: जाता है। और इसकी दवाइयों की तो आदत फिर पड़ ही जाती है ना?
0: दवाइयों की आदत बोलना गलत रहेगा, आदत नहीं है ये, आपकी जरूरत है, क्योंकि आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आप को बीपी से जो नुकसान है, बीपी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं कर रहा, बीपी जहां जहां अपनी मार मारता जा रहा है वहां पे नुकसान
1: वहां
0: कर
1: पे
0: रहा है।
1: नुकसान करता है।
0: तो अगर आप अपने मस्तिष्क को, दिमाग को, अपने हार्ट को, अपने किडनी को, उनको स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बीपी आपको कंट्रोल में रखना होगा।
1: जी
0: और बीपी में कंट्रोल रखने के लिए, अगर आपको, मान लीजिए आपका बहुत कम ब्लड

0: प्रेशर भी आपका थोड़ा सा ही बीपी बढ़ा था, बहुत ज्यादा बीपी नहीं बढ़ा था। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके अगर वो कंट्रोल में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: अगर नहीं आता है और आपको लगता है बहुत ज्यादा रह रहा है तो बेहतर है आप दवाई शुरू करके उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर दवाई पे अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपको कम से कम इतनी तो वो रहेगा कि एटलीस्ट आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें।
1: जीते कई बार लोग कहते हैं कि टेंशन होगी तो बीपी बढ़ गया और टेंशन खत्म होगी तो बीपी भी ठीक हो गया, ये तो सामान्य ये चीज
0: ये
1: हो
0: एक
1: सकती है।
0: धारणा हो सकती है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया स्ट्रेस के दौरान हो सकता है कोई इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो उस समय हो सकता है कि थोड़ा बहुत बीपी की जो आप नाप रहे हैं एक दो रीडिंग ऊपर नीचे आ जाए।
1: आ जाए
0: पर अगर आपको लगता है जिस तरह से मैंने आपको बताया नियमित जांच कराते रहिए, अगर नियमित जांच पे आपको लगता है कि आपके एक समय से लगातार ही ज्यादा आते जा रहा है तब तो आपको इलाज कराना चाहिए।
1: बिल्कुल। और क्या डॉक्टर विक्रम, रोजाना जैसे 30 मिनट की हम वॉक लेते हैं, सुबह लेते हैं या शाम को लेते हैं, तो इससे भी बीपी में कुछ फर्क आ
0: बहुत फर्क
1: सकता है?
0: पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। व्यायाम एक ऐसी चीज है जो कि आपके बीपी को बहुत ज्यादा आप में फर्क डालेगा। अगर आप रोज का कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट अगर आप रोज का एक वॉक करते हैं, वॉक भी अगर कोशिश करें कि ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करें, तो अगर आप 30 से 45 मिनट रोज का वॉक करते हैं, 30 मिनट भी बहुत है अगर आप रोज का करते हैं, 5 से 7 दिन चलते हैं, तो आप में निश्चित ही आप में आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ रहा
1: और
0: है।
1: इतना समय तो 30 मिनट तो अपने आप को देना बनता ही है, आप दे ही
0: जरूरी
1: सकते
0: है
1: हैं,
0: हमारे लिए,
1: जरूरी
0: अगर
1: है
0: हम
1: अगर
0: खान
1: आपको।
0: पान और बाकी चीजों में इतना समय निकाल
1: जी
0: सकते हैं तो अपने शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ा समय निकालना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और क्या स्कूलों और कार्यस्थलों पर भी हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता देना या बहुत जरूरी है?
0: जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय ऐसा है कि हम हर चीज को दिक्कतें होने के बाद हम तब उस चीजों को उसका इलाज करना शुरू करते हैं। अब समय ये आ गया है कि आप लोगों को पहले से ही जागरूक करिए ताकि आप वो प्रॉब्लम होने से पहले ही
1: पहले ही
0: उसको
1: तैयार हूँ,
0: तैयार
1: उसे
0: हो
1: फेस करने के
0: या
1: लिए
0: उसको
1: तैयार हूँ।
0: आप पहले से ही रिजॉल्व करें। अगर आपका शुरू से ही अगर आप बच्चों को आज के समय में सिखाएंगे कि स्वस्थ खाना क्या है, आपने अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, टाइम पे सोना, टाइम पे करना, व्यायाम करना, मोटापा कम करना, ढंग का खाना खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, अगर आप ये सारे ध्यान रखते हैं जेनेटिक्स को छोड़ के जिस पे कि आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आप इन सब चीजों पे कंट्रोल रखते हैं तो हो सकता है कि आप ब्लड प्रेशर की समस्या को, हाइपरटेंशन की समस्या को होने ही ना दें।
1: होने ही ना दे, बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, हमारे समाज में अपने स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो बन चुकी है, हर कोई मतलब अवेयर नहीं रहता है अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: स्वास्थ्य एक चीज ऐसा है, ये जरूर हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, इतने समय से जब से हम स्वास्थ्य विभाग में हैं, कि लोगों की जागरूकता बहुत कम है स्वास्थ्य के लिए। तभी मैं कह रहा हूं कि हमें प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मींस कि होने से पहले ही उस चीज को
1: रोकना है।
0: रोकना, बीमारी अभी उत्पन्न नहीं है, जिस तरह से हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं उसी तरह से डायबिटीज की बात करते हैं, तो उस तरह से अगर हम बोलें कि अगर हम कोशिश करें अपने कुछ प्रयास से कि अगर प्रॉब्लम्स को ना होने दें तो बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य का जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अब लोग हमारे अगर मान लीजिए कि अगर हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसका दिल कमजोर हो गया, किसी को हार्ट फेलियर हो गया, किसी को पैरालाइज हो गया, अब ये सारे जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी शुरू तो हाइपरटेंशन से हुई। अगर आपने हाइपरटेंशन, अगर लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता नहीं होगी और लोग यही सोचते रहे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दवाई खाने से, थोड़ा बहुत बीपी ऊपर नीचे चलता है, अगर जागरूकता हम नहीं फैला पाएंगे तो आपके पास आने वाले समय में किडनी वाले मरीज, पैरालाइज वाले मरीज, स्ट्रोक वाले मरीज, हार्ट के मरीज, ये इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे कि आपके संसाधनों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ जाएगा और हो सकता है कि हम उसको चला ही ना पाए।
1: डॉक्टर साहब, यदि आपको हाइपरटेंशन से बचाव के लिए 3 सबसे जरूरी मंत्र देने हो तो आप क्या देंगे वो?
0: हाइपरटेंशन से अगर 3 इम्पोर्टेंट चीजें अगर हम कहें तो अपना स्वस्थ बिल्कुल पौष्टिक आहार खाइए,
1: जी
0: अपना मानसिक स्ट्रेस को बिल्कुल कम रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल कम रखिए जितना ज्यादा हो सकता है, अपना स्ट्रेस खुश रहिए, स्ट्रेस कम रखिए और पौष्टिक आहार खाए और नियम व्यायाम करते रहिए, और चौथा चीज जरूर बोलेंगे कि आपने नियमित जांच भी कराते रहिए।
1: बिल्कुल। और आज के हमारे यूथ को, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: यूथ को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक बने, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप प्रिवेंटिव मोड में नहीं आएंगे, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने स्ट्रेस का लेवल का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे और आने वाला समय जो होगा वो बीमारियों से ही घिरा रहेगा लोगों को।
1: जी बिल्कुल। और अंत में क्या आप एक पंक्ति में बताना चाहेंगे स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
0: स्वस्थ जीवन का रहस्य हमारे हिसाब से तो खुश

0: रहना।
1: तो श्रोताओं, आज की इस विशेष चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि हाइपरटेंशन केवल एक बीमारी नहीं बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली का एक गंभीर संकेत है। व्यस्तता जरूरी है, सफलता भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना, क्योंकि जब दिल स्वस्थ होगा तभी सपनों की धड़कने भी मजबूत रहेंगी। थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, तनाव को विराम दीजिए, नियमित जांच करवाइए। डॉक्टर विक्रम शाह जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतनी अच्छी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जीवन का संगीत बसता है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम आरोग्य में मुझे यानी रीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम, कार्यक्रम निर्माता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता।

गुमराह फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं कयामत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कहते हैं श्रोताओं कि दिल एक ऐसी चीज है जो अपनी ही मर्जी से धड़कता है, इस पर किसी का भी जोर नहीं चलता। लेकिन कभी कभी कोई हमारी जिंदगी में इतनी खामोशी से आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, और वो कब चुपके से हमारा दिल चुरा ले जाता है। फिर ना नींद आती है और ना ही चैन। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है, तो चलिए आपको ले चलते हैं ऐसे दौर में जहाँ पर आप किसी को याद किए बिना रह नहीं सकते। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की ये जादुई आवाज़ है, फिल्म का नाम है दिल।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
0: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
0: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
0: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, दिस मे ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया क्रिमिनल फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम।

हिमाचली गीत और लोकगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त प्रवीण लोकगीतों के साथ।

0: बलदेव सिंह और साथियों की आवाज में माता की ये भेंट अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी।
1: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
2: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब जे एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
3: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।

0: every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से।

हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ओम प्रकाश व साथियों की आवाज में यह लोकगीत अभी आपने सुना। अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं नरोत्तम कुमार की आवाज में लोकगीत।

इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का हिमाचली गीतों लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। शहरी निकायों में 449 में से 439 पदों के लिए 1147 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 196 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शहरी निकाय चुनावों के लिए 360,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के बाद आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। मंडी जिला में आज शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेज धूप को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार जिले में कुल 63,112 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके लिए 90 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 538 अधिकारी कर्मचारी और 180 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आज नगर निगम के 14 वार्डों सहित नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर और करसोग में मतदान हो रहा है। नगर निगम मंडी में सबसे अधिक 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: नगर निगम धर्मशाला के कुल 17 वार्डों में मतदान के लिए 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील तथा 5 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था व विशेष निगरानी की जा रही है। SDM मोहित रत्न ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 36,800 है। इनमें 18,258 महिला मतदाता तथा 18,542 पुरुष मतदाता शामिल हैं। सोलन नगर निगम के 17 वार्डों के चुनाव के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आज सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। नगर निगम सोलन में कुल 34,147 मतदाताओं में से 17,274 पुरुष तथा 16,872 महिला मतदाता हैं, जबकि एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। शहरी निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
2: मैं वोट डाल के आ गया। उज्जवल भविष्य, अच्छी नगर निगम, अच्छी डेवलपमेंट के लिए सभी वोट डाले और अच्छी सरकार चुने।
3: जो अभी मैं ये मतदान करके आया हूँ और जो हमारे एरिया के जितने लोगों ने भी मतदान किया है, उनका एक ही लक्ष्य है कि उनको एम्बुलेंस रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। उस मुद्दे को लेकर हमने ये कहा और इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने ये दिया है कि इसमें बदलाव लाओ ताकि जो हमारे क्षेत्र में चिरकाल से समस्याएं उनका निदान हो सके। फंड की कमी ना आए, नेतृत्व की कमी ना आए, जो उनका रोड प्लान है, जो उनके मॉडस ऑपरेंडी है वो सही से हो।
4: मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैं आनंद विहार वार्ड नंबर 12 की निवासी हूँ और मैं अभी वोटिंग वोट करके आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट चुन के आए वो लोगों के हित के लिए कार्य करे और सभी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करें।
0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की डंखर पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी एकता और तालमेल की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्पीति के माने योगमा गांव निवासी अशोक के परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: जानकारी के अनुसार तंजिन छोडुन को प्रधान, सोनम छोकित को बीडीसी सदस्य और सोनम आंगमो को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत ने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों के लिए विश्वास के साथ चुना है। इस फैसले की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग पंचायत की एकजुटता और परिपक्व सोच की सराहना कर रहे हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि आपसी सहमति का बनना गाँव की एकता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ग्रामीणों का मानना है कि जब समाज मिलकर निर्णय लेता है तो विकास और सामाजिक सौहार्द की राह और मजबूत। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में आरसीबी 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
6: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:06 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य सुमन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस सुगंधित साहित्यिक उपवन में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम है साहित्य सुमन, जहां शब्दों की महक, भावनाओं की खुशबू और विचारों की गहराई मिलकर रचती है एक अनूठा संसार। मैं हूं आपकी अपनी सचिता और आज हम आपको लेके चलेंगे उस रचनात्मक यात्रा पर, जहां कविताएं दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं और कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि जी ली जाती हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोस में उपस्थित हैं एक ऐसे ही विशिष्ट साहित्यकार, जिनकी लेखनी में संवेदना है, विचारों में गहराई है और शब्दों में एक अद्भुत सा जादू है। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि डॉक्टर शिल्पा जी का। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोस में।
1: धन्यवाद आपका।
0: तो शिल्पा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि साहित्य के इस सुंदर सफर की शुरुआत आपके जीवन में कब हुई और कैसे हुई?
1: साहित्य की जो शुरुआत है, मेरा बचपन से ही ये स्टार्टिंग हो गई थी। छोटी थी मैं, 5th क्लास में, एकदम से मतलब अकेले में बैठे बैठे मन में विचार आए तो उनको ना मैंने पंक्तियों में पिरो दिया। चांद तारों की बातें, वो गर्मियों पे छत पे हम छोटे छोटे होते थे खेलना, तो वही विचार एकदम मन में आए। उस दौरान मैंने पहली जो पंक्ति थी वो कविताओं के जरिए पिरो दी। पहली जो मेरी कविता थी वो थी, इस बादल को पूछा मैंने, ये तारे क्यों छुपा दिए, ब बोला क्या किया है मैंने, ये खुद मुझ में समा गए, मैं भी तो आया था देने खुशियों के सौगात, नहीं तूने मुझ पर तोहमत लगाई, मेरे मन से बात गई, दिख रहे हैं अंबर के तारे, भूल गए तुम उपकार सारे, मैं वही जो जीवन देता, देता हरियाली खाना और सांस यहाँ, मेरी ही दी बरखा के कारण पैदा होता अनाज यहाँ, सुनकर बादल की सारी बातें मैं हो गई हैरान, मैंने मांगी माफी उससे, फिर किया नमन उसे, तारों का तो चमकना है काम, बादल तू ही है जीवन का धाम, तू ही है जीवन का धाम।
0: हम ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त आपके आसपास ऐसा आपने क्या महसूस किया, क्या आपके अंदर ऐसी भावना रही कि आपने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया?
1: मुझे ऐसे लगता है भावनाएं उत्पन्न होती हैं आपके आसपास के पर्यावरण से, जहां आप बैठे हो। विचार कभी बनते नहीं हैं, वो उपजते हैं कि आप कैसे माहौल में बैठे हो। तो जहां मैंने जीवन यापन किया है, वही एक व्यवहारिक कहो या पर्यावरणिक कहो, उस विचारधारा ने मेरे मन को बहुत विकलित किया, जिससे मैं साहित्य की ओर अग्रसित हुई और मेरी लेखन में रुचि बढ़ी।
0: अगर आप अपने साहित्यिक जीवन को 3 शब्दों में परिभाषित करना चाहती हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे?
1: मुझे लगता है कि वो 3 शब्द होंगे आपकी विचार शैली, आपके अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण। ये 3 शब्द आपको बहुत प्रभावित करते हैं साहित्य लेखन में। अभिव्यक्ति वो है जो हम जीते हैं, जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं अपने विचार दूसरों तक। मैं जो सोचती हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरा कैसा साहित्य है, जब मैं चीज़ों को किस तरह से समझती हूँ, वो मैं अपने श्रोताओं तक जा कहो कि अपनी कविताओं के जरिए जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ।
0: आपकी जो लेखन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही थी वो क्या थी, जैसे समाज, व्यक्तिगत अनुभव या फिर कल्पना?
1: सर्वप्रथम आपको साहित्य लेखन में व्यक्तिगत प्रेरणा और अभिव्यक्ति और सामाजिक, ये तीनों चेतनाएं बहुत प्रभावित करती हैं। अभिव्यक्ति आप दूसरों तक तभी कर सकते हो जब आप समाज में रहकर उन धाराओं को महसूस करते हो।
0: समाज में रहकर ही व्यक्ति अनुभव करता है, उन्हीं अनुभवों को अपने लेखनी में उतारता है।
1: जी हाँ जी
0: जी। तो अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप लिखते हैं तो क्या पहले विचार आता है या फिर शब्द खुद ब खुद आकार लेने लगते हैं?
1: सर्वप्रथम तो विचार ही आते हैं, विचार ही, विचारों को ही हम शब्दों के माध्यम से परोते हैं और शब्द ही फिर अभिव्यक्तियों का एक काल्पनिक स्रोत बनते हैं।
0: जी, आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, तो आप ऐसी कोई कविता हमें अपनी सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो।
1: जी, ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी है और आधुनिक युग से जुड़ी हुई कविता है, सुनाती हूँ मैं आपको। कल इश्क की हसीन बात मेरे लबों पे आ गई, मुस्कुराहट की रौनक सारी छवि पे छा गई, खोया खोया जाने लगा मतवाली चाल में, हाय हुस्न का मुस्कार बैठा फूल डाल में। ये उलझी उलझी निगाह कहाँ जाने लगी थी, हाय तेज तेज हवा दिल जलाने लगी थी। सब ने पूछा तुझ पे ये कैसा हुआ असर, किस देश पी के आया है बता हमको वो बसर। होश कहाँ मैं तो दिल गवा के आया था, सजदे में उनके खुद को मैं चढ़ा के आया था। डर डर के मेरी ओर वो जो देख रहे थे, हाय पहल मेरे इश्क की मैं बढ़ा के आया था। हाय खूबसूरत हुसन चहक महक रहा था, रूह मेरी बार बार बात करती थी, हाय आज क्या मैं उसको ये बता के आया था। लब्स मेरे होठों में फुसफुसा रहे थे, इजहारे इश्क याद कर मुस्कुरा रहे थे। नशा उसके नाम का उस वक्त चढ़ा था, हाय कुछ करीबियों को ये बता के आया था। रात भर पुराने गाने गाता रहा था, हाय उस दिन मोहल्ले में सबको भी सुनाता रहा था। कल इश्क की हसीन बात मेरे लबों पे आ गई, मुस्कुराहट की सारी रौनक छवि पे छा गई। खोया खोया जाने लगा मतवाली चाल में, हाय हुस्न का मुस्कार बैठा फूल डाल में।
0: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को, और आधुनिक शैली से जुड़ी हुई ये कविता है।
1: क्योंकि मैं एक आधुनिक साहित्यकार हूँ, मेरी एक कविता है पथिक अकेला। पथ पर चल रहा पथिक अकेला, डूबा अंधकार हुआ सवेरा। मंजिल को तलाश रहा, घर से पीछे मुड़कर बार बार निहार रहा। कभी तो पूरे होंगे सपने, मन को तसल्ली देकर समझा रहा। पथ पर चल रहा पथिक अकेला, डूबा अंधकार हुआ सवेरा। आज तो मंजिल खोज कर ही लौटूंगा, खुशियों को घर लेकर ही लौटूंगा। आज तो मंजिल खोज कर ही लौटूंगा, खुशियों को घर लेकर ही लौटूंगा। राहों से हटा दूंगा सब कांटे, कलियों के बना दूंगा सब सांचे। अब ना हार कर आऊंगा वापिस, ऐसे सपने संजो रहा। पथ पर चल रहा पथिक अकेला, डूबा अंधकार हुआ सवेरा। आगे जाते जाते वो सोच रहा है, आज जब आऊंगा घर वापिस, खुशियां होंगी हर तरफ। आज जब आऊंगा घर वापिस, खुशियां होंगी हर तरफ। घर में छाई रौनक होगी, हाँ मगर पड़ोसियों के घर में भी थोड़ी भानक सी होगी। ऐसा सोच खुशी से मुस्कुरा रहा, पथ पर चल रहा पथिक अकेला, डूबा अंधकार हुआ सवेरा। पथ पर पथिक अकेला गुनगुना रहा, पथ पर चल रहा पथिक अकेला।
0: जी बहुत अच्छी कविता आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई। आपकी कविताओं में भावनाओं की गहराई साफ झलकती है, तो क्या ये आपके जीवन के अनुभवों का ही प्रतिबिंब है?
1: जी कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी पंक्ति या कविता जब तक हमने वो जरिया जिया ना हो, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसी भी कविता में हमारी भावनाएं विशेष महत्व रखती हैं।
0: तो आज के दौर में हम देखते हैं शिल्पा जी की कविताओं का स्वरूप भी बदला है।
1: मुझे ऐसे लगता है कि बदलाव जीवन का एक अभिन्न अंग है। बदलाव जरूरी भी है, जैसे प्रकृति का नियम है बदलाव, तो ये आधुनिकीकरण भी हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। आज के युग में जहाँ हमें घंटों लाइब्रेरी में चीज़ें ढूंढ कर पढ़नी पड़ती थी, दो मिनट पे आप ऑनलाइन बुक्स घर मंगवा सकते हो, घर में बैठ के पढ़ सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, तो बदलाव कहीं ना कहीं अच्छाई का ही एक प्रतीक मान सकते हैं हम इसको।
0: जी हम कह सकते हैं कि आजकल के डिजिटल युग में कविताओं का स्वरूप भी बदला है, और साहित्य की जो भूमिका है, पाठकों की जो रुचि है, उसमें भी बदलाव आया है। तो को आप किस तरह से देखते हैं?
1: जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही साहित्य में विशेष रुचि लेती थी, पर आगे आगे जैसे जैसे जीवन बदलता गया, इसमें मेरी एक भावनाओं को अभिव्यक्त करने की विशेष रुचि जुड़ती चली गई। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं आकर अपनी दिनचर्या को डायरी में व्यक्त करती थी, लिखती थी। पता ही नहीं चला कि मुझे साहित्य ने चुना, कि मैं साहित्य का एक अभिन्न अंग बन गई। अपने विचारों को रोज़ एक डायरी में व्यक्त करके स्टोर करके रखना, फिर कई महीनों के बाद उनको पढ़ना, तो वो एक कहानी का स्वरूप ऑलरेडी बन चुके होते थे।
0: ये बताइए कि कभी कोई आपकी ऐसी कविता थी जो अधूरी रह गई हो, जिसे आप पूरा ही ना कर पाए हों?
1: जी, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। पिछले 6 साल से मेरे जीवन में एक विशेष उथल पुथल चला हुआ था, तो मेरा बहुत सारा साहित्यिक कार्य जो है वो अधूरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने खुद को कहीं ना कहीं एक तरह से भुला दिया था, तो उस समय काफ़ी साहित्यिक चीज़ें थी जो मेरी छूट गई थी।
0: तो आप भविष्य में उन कविताओं को पूरा करना चाहेंगे?
1: जी जी, ज़रूर
0: जी। तो अब हमें ये बताइए कि क्या कविता समाज को बदलने की ताकत रखती है?
1: जी, बहुत ताकत रखती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको समाज को बदलना है तो आपको एक साहित्यिक जरिया चुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
0: तो ऐसी कविताएं भी आप लिखती हैं जो समाज से जुड़ी हुई होती?
1: जी, एक मेरी कविता है साहस। मिटाकर आई उन लकीरों को, तोड़ कर आई सब जंजीरों को, जिन्होंने मुझको पकड़ा था, मेरे सारे साहस को जकड़ा था, छोड़ दिया उन जागीरों को, जिन्होंने चार दीवारी में रखा था, मुझे घूंघट में छिपाकर रखा था, मेरे सारे हुनर को दबाकर रखा था। अब निकली हूँ बाहर, मैं नाम बनाऊंगी जाकर, मैं काम करूंगी साहस से, करना पड़े चाहे बहस से, परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, रास्ते चाहे कितने भी जटिल हों, साहस से करूंगी पूरा काम, ताकि दुनिया में मेरा भी बन सके कोई नाम। मिटाकर आई उन लकीरों को, तोड़ आई सब जंजीरों को, जिन्होंने मुझको पकड़ा था, मेरे सारे साहस को जकड़ा था।
0: कविताओं के अलावा और कहानियां भी आप लिखती हैं?
1: जी
0: जी, तो अपनी कहानियों के बारे में आप हमें बताइए।
1: जी, अभी तक मेरी कहानियों की 2 पुस्तकें आई हैं, एक इंतज़ार और एक चाहूं जो मैं तुझको। इसमें विशेष जो कहानियां हैं वो हमारे आसपास के क्षेत्रिक जरियों से ही जुड़ी हुई हैं। कहानियों के जो मुख्य पात्र हैं, आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं उनमें डूबोगे। सर्वप्रथम मेरी जो कहानी थी वो एक लड़की ऐसी भी, एक अंधेरा कमरा, उस रात अपना लोस नहीं कराना, और भी काफ़ी कहानियाँ।
0: तो आपकी जो कहानियाँ हैं उसमें जो पात्र हैं, क्या वो वास्तविक जीवन से प्रेरित होते हैं या
1: जी
0: पूरी तरह से काल्पनिक?
1: जी, मेरी एक कहानी है पठानकोट अटैक, तो वो पूरी तरह से आप उस अटैक को जब वो कहानी पढ़ोगे तो उस अटैक को एक काल्पनिक जरिए से जियोगे
0: जी।
1: आप महसूस करोगे कि जब कहीं युद्ध होता है या फिर कहीं मारपीट होती है तो इंसान कितना घूम जाता है उस जगह पे, वो आप मेरी कहानियों पे देख सकते हो कि पात्र कैसे डरे हुए हैं कि किसी क्षण भी उनकी मौत हो सकती है, घरों में कितना एक तरह से डर का माहौल छाया हुआ है, जिनके बच्चे बाहर हैं वो कितने डरे हैं, तो वो सब आप चीज़ें मेरी कहानियों में देख सकते हो, पढ़ सकते हो
0: जी। तो एक प्रभावशाली कहानी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी तत्व क्या होता है, कथानक पात्र या फिर भाषा?
1: कथानक पात्र। अगर आपकी कहानी की कथा अच्छी है
0: जी,
1: जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आप उस चीज़ को समझ रहे हो, जी रहे हो, महसूस कर रहे हो।

0: जी कहीं ना कहीं घर वालों को चिंता रहती है कि हमारी बेटी बाहर है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, जा कहो कि खोलती हैं मुझे कि आधुनिक समय में भी एक नारी इतनी विचलित होके रह रही है। तो वो पात्र मेरा बचपन से अभी तक साथ ही चला हुआ है।
1: तो ये बताइए शिल्पा जी कि आपको लगता है कि आज का जो युवा वर्ग है साहित्य से दूर हो रहा है या फिर नए रूपों से जुड़ रहा है?
0: जी बहुत सा युवा वर्ग साहित्य से अब पिछड़ता जा रहा है। कह सकते हैं आधुनिकीकरण जब प्रभावशाली, के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि जो भी लिखो, जो भी अभिव्यक्त करो, वो हमारे समाज को सुधारने का एक जरिया हो, उससे समाज को एक विशेष महत्व मिले।
1: तो आपके लेखन में ऐसा कौन सा विषय है जो आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
0: मेरी एक कहानी थी, एक लड़की ऐसी भी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी, 16-17 साल की थी, और उस कहानी से मैं इतना जुड़ी हुई थी कि उस कहानी के लिए मुझे शब्द शिल्पी सम्मान भी मिला है हिमाचल प्रदेश की तरफ से।
1: जी
0: वो कहानी मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि वो उसमें जो पात्र है, मैंने उस पात्र को स्वयं जिया है, एक एक पात्र को।
1: जी इस कहानी का शीर्षक है एक लड़की
0: जी ऐसी
1: ऐसी
0: भी।
1: भी। तो इस कहानी के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: जी ये कहानी है एक लड़की की जो बचपन से ही स्ट्रगल करती है, और स्ट्रगल पीरियड उसका पूरी कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि वो पैदा हुई तब से संघर्षमय जीवन चला, और आखिर तक उसका संघर्षमय जीवन ही चला हुआ है जब तक वो आखिरी सांस नहीं ले लेती।
1: तो शिल्पा जी अब कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को एक कविता सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो।
0: जी ये कविता है आज के युग की ही, अपना लोस नहीं करवाना, अपना लोस नहीं कराना, कहे ये हमसे सारा जमाना, चाहे रुपया ही पड़े बचाना, पर अपना लोस नहीं कराना। महंगाई बहुत लगती है अब, बिन प्याज टमाटर के सब्जी खाते हैं शायद सब, हर जगह बस यही फसाना कि मैंने अपना लोस नहीं कराना। किराया लगने लगा है महंगा, मैंने भी पैदल ही चलते जाना, पर अपना लोस नहीं कराना। आजकल बात बड़ों से होती है हमें, आजकल बात बड़ों से होती है, हम छोटे दुकानदारों को ना पूछे अब जमाना। बड़े बड़े बाजारों में बेशक देना ही पड़ जाए 1,000 का आना, फिर भी आकर घर में यही कहते हैं कि अपना लोस नहीं कराना।
1: तो शिल्पा जी आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: तो श्रोताओं आज साहित्य सुमन में हमने जाना कि शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की आवाज होते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिल्पा जी ने जिस तरह से अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को हमारे साथ साझा किया, वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। साहित्य हमें सोचने की दिशा देता है, महसूस करने की गहराई देता है और जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी। इसी के साथ आज के इस साहित्यिक सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन शब्दों की ये खुशबू आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। अब मैं सचिता आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सुमन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। अब सुनिए फिल्म संगीत।

इतिहास फिल्म से गीत अभी आपने सुना, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें थी। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाबू से।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म बाबू का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सौदागर फिल्म से। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, मनहर उदास और कविता कृष्णमूर्ति।

हीरो फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से।

अर्पण फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सचिता। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वदेश फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में अब आपको जीत फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

बाजीगर फिल्म से सैनिक भाइयों, अभी आपने ये गीत सुना, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजें थी। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं गोपी किशन फिल्म से ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए अनुमति। जय हिंद। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी कार्यक्रम बाल सभा के साथ हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार हम आपको भेज रहे हैं। जी हाँ, संभाल कर रखिएगा इस लाड को, इस प्यार को और दुलार को। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने उन तमाम श्रोताओं का जो एक बार फिर से हम सफर बन गए हैं। हमारे सुहाने से सफर का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। तो रेडियो दीदी प्रवीण बिल्कुल तैयार है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए, जानकारियां पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ आपका मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि हम लाते हैं मीठे मीठे गीतों की फुहार। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये चंद पंक्तियाँ हमारे सभी बाल श्रोताओं के लिए। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। जी हाँ नन्नी दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना, तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, ऐसा ही सोचते हैं ना आप भी लेकिन बड़ी दीदी होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। आने वाले कल का, आने वाले वक्त का कभी भी इंतज़ार मत करना, क्योंकि आने वाला कल हमेशा आज में बदल जाता है। इसलिए आने वाले समय का आपने कभी भी इंतज़ार नहीं करना है और आने वाले समय के लिए आपको पहले से ही समय को तैयार करना है। आपको लगता है कि समय आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन बच्चों वक्त कभी किसी के अनुसार नहीं चलता है। और अगर आप सभी बच्चों को ये लगता है कि हाँ भाई जब हम बड़े होंगे ये करेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये जो लेंगे वाली बात होती है ना, ये भी आपने कल पर नहीं छोड़नी है। वो आपने कबीर का दोहा ज़रूर सुना होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए कल करने वाले कार्य को आज करना है और जो आज आपने काम करना है उसे अब से ही शुरू करना है, क्योंकि बच्चों हर एक बात में कोई ना कोई सीख ज़रूर होती है, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। और दीदी अपने नन्हे दोस्तों को हमेशा यही कहती है और हमेशा दीदी ने आपको यही सिखाया है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थक कर बैठना नहीं है, हार तुम मानना नहीं, धीरे से ही सही पर दौड़ का हिस्सा आपको ज़रूर बनना है। आज आपको लग रहा होगा कि अरे हमारी दीदी को क्या हो गया है, आज ऐसी अटपटी सी बातें क्यों कर रही है, दीदी क्या हो गया है, कहाँ घूम रही हो। कहीं नहीं बच्चों, आज हम बिल्कुल आपके पास हैं, आपके साथ हैं। अगर आप हमें बिल्कुल सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास ही है आपकी रेडियो दीदी। एक्चुअली बच्चों बात ये है कि हमारा आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि अगर हम उस विषय को, उस बात को, उस कार्य को आज ना करके कल पर छोड़ देंगे तो शायद हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और भविष्य के लिए शायद हम खुद को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बच्चों को बताएं आत्मरक्षा के गुण यानी सेल्फ डिफेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे दीदी इतनी सी बात थी, पहले बता देते, कितने सारे आपने ऐसे ही इधर उधर की बातें सुना दी। पर ये जो दीदी है ना आपकी, ये कभी भी आपको इधर उधर की बातें नहीं सुनाती है। हर इधर और उधर की बात में 100% की बात ज़रूर होती है। बच्चों को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण, इस विषय पर हम आपसे बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी बातें हम आप तक
पहुंचाने वाले हैं, लेकिन भाई इसके लिए आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी धर्मशाला के संग 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो पहले हम लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय अंतराल, और इस अंतराल के बाद हम आपसे करेंगे बहुत सारी बातें।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम बाल सभा में। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में है बच्चों की वही जानी पहचानी भुलक्कड़ सी रेडियो दीदी प्रवीण। और अब आपकी दीदी आपको सिखाएगी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के गुण क्यों जरूरी हैं। ध्यान से सुनना है। और हाँ, अगर आप अभी भी इतनी भरी दोपहर में इधर उधर घूम रहे हैं तो आपको इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो दीदी बिल्कुल आपके पास आकर बैठी है और आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। सुनो ध्यान से, अगर आपको हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझाएं कि आत्मरक्षा क्या है तो सुनो बच्चों, आत्मरक्षा का अर्थ है किसी शारीरिक हमले या खतरे की स्थिति में अपनी जान और सम्मान की रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग करना या अपने आप को बचाना। घर में हमारे बच्चे बहुत बार ये सब कुछ करते हैं। जब बड़ा भैया छोटी सी प्यारी सी दीदी को डराता है, धमकाता है, तो छोटी सी दीदी क्या करती है, अपने भैया पर वार करती है और भैया को पता ही नहीं चलता है, अरे छुटकी मुझे कब मारा तूने इतनी जोर से थप्पड़। ऐसा ही होता है ना, तो वही तो होता है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि भाई छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को अपने आप को बचाना है अपने भैया से। और कभी कभी ये जो छुटकी छुटकी प्यारी प्यारी सी दीदी होती है ना, ये भी भाई कब पता बिल्कुल नहीं चलने देती है कि कब इसने पलक झपकते ही जी हाँ झापड़ रख दिया है बड़ी दीदी को और बड़े भैया को। तो उनको भी अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना ही होता है। जी हाँ नन्हे दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है आत्मरक्षा के गुण को सीखना। और हाँ बच्चों, जैसे अगर हम ये कहें कि यह सीखना, ये कला सीखना सिर्फ हमारे लड़कों के लिए ही है तो हम बिल्कुल गलत हैं। लड़का हो या लड़की हो, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के गुण आज के समय की सबसे बड़ी मांग है कि लड़का और लड़की दोनों को सीखने होंगे। जी हाँ, क्योंकि बच्चों आज चारों तरफ का ऐसा माहौल है कि हम कहीं पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, है ना। हम कहीं पर भी हों, हम थोड़ा सा खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। बात हम बाज़ार की करें, कहीं अकेले हैं, हमारे आसपास अनजान लोग हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से डर ज़रूर जाते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो डर अपने आप हमारे दिल में आ जाता है कि अंधेरा हो गया है, हम घर कैसे पहुँचेंगे। और बच्चों इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चे को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएं। जी हाँ, आप घर पर हैं, घर से बाहर हैं, तो छोटी छोटी बातों को आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आप स्वयं को आत्मविश्वासी बना सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, इन्हें सीखेंगे, इन्हें अपनी लाइफ में आप उतारेंगे तो आप अपने आप को आत्मविश्वासी बना सकते हैं। पहले तो ये जान लें कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, उसके प्रति आपको जागरूक रहना है। जी हाँ, फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में ही आपने रहना नहीं है। अपना सब कुछ आपने फ़ोन और कंप्यूटर लैपटॉप को ही नहीं दे देना है बच्चों, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन अपने लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कितनी आवाज़ें हमें लगी, कौन हमें खाने के लिए कह रहा है, कौन हमें उठने के लिए कह रहा है, किसने हमें कौन सा काम दिया है। तो इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल कर आइए और ख़ुद को जागरूक बनाना है आपने। अनजान व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी है, और हाँ, अगर आपको उसके व्यवहार में थोड़ा अजीब परिवर्तन लग रहा है तो तुरंत आपने सतर्क हो जाना है। नन्ही दोस्तों, जब आप स्कूल जा रहे हैं या फिर ट्यूशन के लिए जा रहे हैं या फिर आप बाजार जा रहे हैं, कहीं अकेले आप जा रहे हैं, तो सतर्कता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, एक बात और नन्हे दोस्तों, ध्यान से आपने सुननी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपका पीछा कर रहा है, उसका व्यवहार आपको असामान्य लग रहा है, तो सतर्क रहें, कहीं वो आपके लिए खतरा तो नहीं बन रहा है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है नन्हे दोस्तों कि हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही चल रहा है, अपनी राह चल रहा है, लेकिन हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने अगर इस व्यक्ति पर अपनी कड़ी नज़र ना रखी तो हो सकता है ये व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सभी माता पिता और सभी अभिभावकों से भी हमारा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि जहाँ आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा खान पान देना सुनिश्चित करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, ठीक वैसे ही आज के समय की ये बहुत बड़ी मांग है कि आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी ज्वाइन करवाइए, उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, क्योंकि बच्चों, मम्मी पापा हर समय आपके साथ नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल आपको बड़े होकर बाहर तो जाना ही है ना, पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो कब तक मम्मा और पापा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके आसपास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी उंगली पकड़कर आपको सड़क पार करवाएंगे, आपको बहुत सारे काम सिखवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नन्हे दोस्तों कि अब आपको तैयार होना है, अपने आप के लिए तैयार होना है, आपको उन खतरों के लिए शायद जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं कार्यक्रम में और सुनवाते हैं अपने नन्हे दोस्तों को एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। गीत को सुनिए और पुनः आपको लौट कर आना है फिर इसी कक्षा में।

सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो रेडियो दीदी अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को आज बता रही है आत्मरक्षा के गुण। जी हाँ, क्यों सीखना जरूरी है। जी हाँ नन्हे दोस्तों, समय की मांग, और समय की मांग ये कहती है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता चाहें तो घर पर भी अपने बच्चों को अलग अलग स्थितियों का नाटक करके बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक माता पिता में एक हीरो और एक हीरोइन ज़रूर होती है, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि अगर कोई अचानक उन पर हमला कर रहा है तो आपके बच्चे ने किस तरह से अपने आप को बचाना है, तो कभी घर पर भी आप रोल प्ले करके इस तरह की स्थितियां क्रिएट कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं कि अगर कभी उसके साथ इस तरह से हो तो वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स, कराटे या ताइक्वांडो जैसी कक्षाएँ बच्चे को ज्वाइन आप करवा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फिटनेस भी आती है बच्चे में और डिसिप्लिन भी बच्चा सीखता है। इसके साथ साथ खुद को किस तरह से बचाना है ये बात भी बच्चा इन क्लासेस में सीखता है। बच्चे जब कभी भी आपके आसपास आपको खतरा महसूस हो तो तेज़ आवाज़ में आपने चिल्लाना है, मदद के लिए आपने पुकारना है, वो भी धीरे से नहीं, जोर से। जी हाँ, मुसीबत का आभास अगर आपको होना तो सबसे पहले वहाँ से भागने की कोशिश आपने करनी है। स्वयं पर विश्वास आपने रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और हाँ बच्चों, एक बात दीदी को और याद आ गई, कहती हूँ ना मैं कि बहुत भुलक्कड़ हूँ, अब आपसे बातें नहीं करूँगी तो बातों ही बातों में बातें कैसे याद आएंगी। तो बात ये याद आई गुड टच और बैड टच। जी हाँ, अजीब स्पर्श या व्यवहार की पहचान करना आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये बात। आपको पता होना चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। बड़े हो गए हैं भाई आप, कब तक छोटे बनते रहोगे, कब तक कहते रहोगे कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटी ही। बच्चों, आत्मरक्षा का गुण न केवल शारीरिक हमलों से खुद को बचाव में सक्षम बनाता है, बल्कि इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं अपने नन्हे दोस्तों से, अभिभावकों से, माता पिता से, कि आज के कार्यक्रम में आपने इतना ज़रूर सीखा होगा कि जहाँ हम अपने बच्चों को अच्छा खाना, शिक्षा, कपड़े, है ना, कई सारी सुख सुविधाएं अपने बच्चों को देते हैं, तो वहाँ पर एक बात आपने और तय कर लेनी है कि अपने बच्चों को आपने सेल्फ डिफेंस के गुण भी ज़रूर सिखाने हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन के माध्यम से घर पर भी आप अपने बच्चों को इस तरह से मतलब खुद से किस तरह से बचाव करना है सिखा सकते हैं। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को दीजिए और सिखाइए उन्हें, ताकि वो किसी भी प्रकार के जो खतरे होते हैं, जी हाँ, उनसे उस समय डरे नहीं, घबराए नहीं। और अगर छोटी छोटी इन बातों को हमारे बच्चों ने, हमारे नन्हे दोस्तों ने सुना होगा तो वो ज़रूर उस समय इन बातों को वहाँ पर लागू ज़रूर करेंगे। चलिए अब चलते चलते हम अपने नन्हे दोस्तों तक पहुँचाते हैं आज की रोचक जानकारियाँ। तो रोचक जानकारियों में सबसे पहले हम अपने नन्हे दोस्तों को बता रहे हैं बाघ की दहाड़। जी हाँ, 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है। नन्हे दोस्तों, ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। बच्चों, शुतुरमुर्ग केवल एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
बच्चों, हमारी पेट का एसिड इतना मजबूत होता है, जी हाँ, कि यह धातु के रेजर ब्लेड को भी आसानी से पिघला सकता है। और ये एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पेट की कोशिकाएं स्वयं को इस एसिड से बचाने के लिए हर कुछ दिनों में एक नई परत बना लेती हैं। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ जो रेडियो दीदी ने पहुँचाई अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों तक। और अब हम आज का ज्ञान भी आप तक पहुँचाते हैं। नन्हे दोस्तों, जीवन में कभी हार जाएं तो फिर से शुरुआत करने में जरा भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार अगली शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। तो अब चलते चलते एक और प्यारा सा गीत हम अपने नन्हे दोस्तों के लिए भेज रहे हैं।

तो जाने से पहले हम अपने नन्हे दोस्तों को बता देते हैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विपिन कुमार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने, पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फ़ोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फ़ोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार के बोलों को शुरू में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वह हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर। यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतज़ार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं? वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूर संचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज़ की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी, हवाओं, पालकी, परदेसियों, प्यार दास्तान, देहरादून, रंगून, गम उठाने, ख्याल, मन का नगर, मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर, ये जानकर भाई आपकी नींद ख़राब तो ज़रूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हमने सनम को ख़त लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई ख़त ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस ख़त का इंतज़ार है, या फिर इंतज़ार ख़त्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये ख़त नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतज़ार रहता है, ना वो ख़त आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये ज़िंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओ कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के

सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामाफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए। तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो ज़रूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मज़मून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफ़र में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पाल की रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक हैं परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं, आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा। इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें दूरियां ना आ पाए, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है। हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेली कम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

0: में यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयाँ लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार ज़रूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नज़र आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नज़र नहीं आया है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा ज़बरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मज़ा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मज़ा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोता ये बात ज़रा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थीं वो थोड़ी देर से पहुंचती थीं, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराज़गी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है, जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी ज़रा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियाँ केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नज़र आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबारत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं, और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं, मुस्कानें, आवाज़ें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मुहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: Oh, damn.

मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आँखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला VBS के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं, जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शाम में इतनी तेज़ नहीं भागती थी, जब शामें इतनी तेज़ नहीं भागती थी और इंतज़ार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी ख़त बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज़ में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आँखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम, बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थीं। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज़ और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद दूरियों के बावजूद रिश्तों की नज़दीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

श्रोताओ, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया, शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं एक बजे, सुरीला सफ़र की बागडोर संभाल रही हैं, इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो ज़रूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामाफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत ज़रूर पहुँचे।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए, और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

चांदी है। दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन ना केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूरसंचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? करो क्या dial number?
2: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ, और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की

0: रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना।

0: संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

ये मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: के शर्मा न जाए फूलों।
1: आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान ठीक इसी समय शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। दोपहर 1 बजे तक की जानकारी के अनुसार शहरी निकायों में करीब 49% मतदान दर्ज किया गया है। धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन नगर निगमों के साथ प्रदेश की 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश भर में 449 वार्डों में से 10 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 439 वार्डों में मतदान करवाया जा रहा है। इन सीटों पर 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना आज शाम तक पूरी हो जाएगी, जबकि नगर निगमों के चुनावी नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि सिरमौर जिले में सबसे कम 18% मतदान हुआ है। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला जिले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। सिरमौर जिले में भी नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ का मतदान शांतिपूर्ण रहा। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है।
1: लोगों में उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व की। पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनकी उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में प्रचार के दौरान नाहन नगर परिषद की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, तो इसमें विश्वास नहीं पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जो है नगर परिषद नाहन तो आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगी। उसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है।
0: मंडी जिले में नगर निगम के 14 वार्डों सहित 4 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों में दोपहर 1 बजे तक कुल 52.46% मतदान दर्ज किया गया। इस अवधि में नगर निगम मंडी में करीब 50% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन में निरंतर जुटी हुई है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महासचिव डॉ सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से आर्थिक राष्ट्रवाद और विवेकपूर्ण उपभोग के आह्वान ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई चेतना जागृत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सोने के सीमित उपयोग और ईंधन संरक्षण से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी कदम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। थलसेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत आयोजित अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये भर्ती परीक्षा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं के लिए आयोजित की गई थी। थलसेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि उम्मीदवार ये परिणाम सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC .IN पर देख सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत में AI संचालित वित्तीय समावेशन। वाचक है पूनम शर्मा।
0: भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा एक रूपांतरकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयोजन से प्रेरित है। बुनियादी बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक प्रौद्योगिकी आधारित इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जो व्यापक स्तर पर बुद्धिमत्तापूर्ण, समावेशी और वास्तविक समय की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। विशाल डिजिटल फुटप्रिंट, उन्नत एनालिटिक्स और सहमति आधारित डेटा साझाकरण ढांचे का लाभ उठाते हुए दक्षता बढ़ाने, आउटरीच का विस्तार करने और अधिक व्यक्तिगत वित्तीय समाधानों को सक्षम करने के जरिए AI वित्तीय सेवाओं को डिजाइन और वितरित करने के तरीके को बदल रहा है। वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से निर्बल वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमजोर समूहों के लिए समय पर पर्याप्त और किफायती ऋण के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। भारत में ये एक नीतिगत लक्ष्य से डिजिटल फर्स्ट वास्तविकता में बदल गया है। पिछले एक दशक में अंतः पारस्परिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के एक समूह ने वित्तीय पहुंच को नीतिगत उद्देश्य से एक परिमाण योग्य प्रौद्योगिकी संचालित वास्तविकता में बदल दिया है। ये परिवर्तन पहचान, सत्यापन, निर्बाध भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ वितरण को सक्षम करने वाली मूलभूत प्रणालियों पर आधारित है। ये प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय सेवाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सुलभ, किफायती और कुशलतापूर्वक उपलब्ध हों। साथ में वे एक एकीकृत इकोसिस्टम की आधारशिला का निर्माण करते हैं, जो अंतिम मील कनेक्टिविटी और भविष्य के नवाचारों की सहायता करता है। JAM सार्वभौमिक बैंक खातों, बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी का एक मूलभूत संयोजन है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट वित्तीय पहचान और राज्य से सीधा संबंध प्रदान करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भौगोलिक दूरी अब वित्तीय पहुंच में बाधा नहीं है। UPI एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी दो बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण में सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए निम्न लागत, अंतर संचालित और सुरक्षित अनुभव प्रदान करके डिजिटल भुगतान का लोकतंत्रीकरण करना है। DBT प्रणाली के तहत सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, जिससे सामाजिक कल्याण के वितरण में राजस्व रिसाव और विलंब को समाप्त किया जा सके। वित्तीय सेवाओं में AI के एकीकरण को डिजिटल समाधानों के समर्थन, नियामक नवाचार, संस्थागत पहल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त होती है। इन प्रयासों को जोखिम प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रौद्योगिकी समावेशी बनी रहे। ULI ऋण प्रोसेसिंग में सहायता करने के लिए प्रमाणीकरण सेवाओं, भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट सर्विस और अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय डेटासेट सहित कई डेटा स्रोतों तक डिजिटल पहुंच को सक्षम बनाता है और भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा सुविधा बढ़ाने से लेकर व्यापक स्तर पर बुद्धिमत्तापूर्ण AI संचालित वित्तीय सशक्तिकरण को सक्षम करने तक पहुंच का विस्तार कर रही है। उन्नत एनालिटिक्स, वैकल्पिक डेटा और मजबूत DPI का लाभ उठाने के जरिए अब फोकस गहन ऋण पैठ, बेहतर जोखिम प्रबंधन और मजबूत उपभोक्ता संरक्षण की ओर बढ़ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर जैसे फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित नियामकों, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से जुड़ा विकसित इकोसिस्टम एक अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। जैसे जैसे भारत अपने विकसित भारत 2047 विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, AI के नेतृत्व वाला वित्तीय समावेशन सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लिए तैयार है, जिससे देश एक लचीला भविष्य के लिए तैयार वित्तीय ढांचा बनाने में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होगा।
2: चर्चा अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, करमवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे धरती, फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य।
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चक्री, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
4: शकुंतला अब कैसी हो बेटी, शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ, चलना ही होगा। अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाले लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
6: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: तो बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: हो गया, लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जा जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे ग्रस्तों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
2: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
3: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
0: प्रिय बताओ,
1: आओ शकुंतला हमसे गले तो मिलो।
0: सखी, तू क्या तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनुसुईया,
1: शकुंतला,
0: तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
2: इतनी अधीर ना हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
6: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
6: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
0: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरणक्रम, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: कन्या सचमुच पराया धन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साय के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
0: पिटारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: तो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
0: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।
1: करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कोई, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटे में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लें, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का,
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने ज़माने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज़ ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाए।
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यशजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यशजी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पर मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा गपशप ऐसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे से कहा ये जी, तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी। तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, ज़बरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था
1: गड़बड़। हाँ, हाँ,
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने, आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई? इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे,
0: हाँ हाँ,
1: उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली,
0: हाँ
1: बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी,
1: मराठी में
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे,
0: हाँ।
1: एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह,
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप,
0: बाबा।
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग है, वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, और गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियाँ हैं,
0: हाँ ये कौन है।
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
0: ओके
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
0: उन्होंने ही बोला,
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ, उन्होंने फ़ोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
0: हाँ
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ये ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
0: डन हो गया।
1: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
0: वाह वाह वाह।
1: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया, सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पर, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
0: हाँ।
1: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊँगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
0: हाँ।
1: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
0: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
1: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया,
0: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
1: जी
0: जी,
1: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे आप चाहिए।
0: गजब।
1: मैं आपको कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
0: हाँ।
1: सामने?
0: हाँ।
1: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
0: वापस वैसे
1: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूँगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुँचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
0: तो बसेरा के लिए हाँ हो गया?
1: हाँ हो गई। और मतलब ये है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटें, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो, तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है, चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे, करते थे वहाँ, आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की।
0: हाँ।
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार।
0: हाँ।
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार

0: रोल छूटा है, मुझे वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा, तो करते करते मैं कन्विंस करता था। फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
1: जी,
0: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
1: जी।
0: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं, यहाँ ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे को फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही। फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वहीं बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
1: अच्छा,
0: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गरम बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबू धाबी स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्मों से भजनों का आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

आसरा फिल्म का ये भजन अभी आपने सुना, लता मंगेशकर ने इसे गाया। कार्यक्रम में अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं आहुति फिल्म से, आवाजें हैं महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल की।

आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी धर्मशाला। शाम के 5:27 हुए हैं और आप सुन रहे हैं फिल्मों से कुछ भजन। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ये भजन मन्ना डे का गाया, फिल्म है बैंक मैनेजर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से कुछ भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच के अंतर्गत मेरी पसंद के कुछ गीत।

युवा मंच कार्यक्रम में मेरी पसंद के अंतर्गत हमारी पसंद के गीतों में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मर्डर फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया अनु मलिक ने।

0: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
0: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मेरी पसंद के अंतर्गत हमारी पसंद के कुछ गीत हम आज आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, शीशा फिल्म से ये गीत हमने लिया है। शब्द रचना देव कोहली की, सेन ब्रदर्स ने संगीत दिया है इस गीत के लिए और गीत में आवाजें हैं ऋचा शर्मा और शहजाद की।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Nexa.
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
4: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa. कार्यक्रम युवा मंच आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम में मेरी पसंद के अंतर्गत हमारी पसंद के कुछ गीत आज सुनवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं कांटे फिल्म से ये गीत जिसे गाया है सोनू निगम ने। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार आनंद राज आनंद।

आपने हमारी पसंद के कुछ फिल्मी गीत सुने। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में ले किए जाएंगे। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिनके लिए हम

और कार्यक्रम में बात होगी। जी हिंदी में समाचार 7:05 पर, अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जिन्हें रिले किया जाएगा। 7:10 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी लेकर हाजिर होंगे। फूलों की खेती बाड़ी को मंडी भाव, मौसम की जानकारी दी जाएगी, भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी और मनोरंजन किया जाएगा किसान बागवान भाई बहनों का लोकगीतों के साथ। शिमला से एक बार फिर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। रात 8 बजे विविध संगीत का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा सबरस। देशगान रात 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। रात 9:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार। और आज के कार्यक्रम में निर्माता निर्देशक

जिनमें 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये था कार्यक्रमों का विवरण, जिसमें हमने जानकारी आपको दी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, जिन्हें हम प्रसारित और रिले करेंगे हमारे केंद्र से। FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 5:58 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में हम आपको आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज लिए चलेंगे, जहां से 6 प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। आज नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही 1147 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए मतों की गिनती जारी है और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के चुनाव नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले में शहरी निकायों के चुनाव के लिए कुल 67.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगर परिषद नाहन में 67.39%, पांवटा साहिब में 65.87%, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ में करीब 78% मतदान दर्ज किया गया। शिमला जिले में नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव में 77% से अधिक मतदान हुआ है। हमीरपुर जिले के नगर परिषद सुजानपुर में 77.88%, जबकि नगर पंचायत भोटा में 83% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला जिले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी और बगड़ा थाच में पार्टी समर्थित जिला परिषद सदस्य के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और इस अवधि में केवल संस्थानों को बंद करने का काम किया गया है।
1: आने वाले समय में एक साल के बाद जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ, और ऐसा बहुमत होगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि

0: 3 वर्ष का वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल ऐसा बीता है, चारों तरफ तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी। एक तरफ से आपदा के कारण बर्बादी हुई और उसके बाद रही सही कसर जो है वो सरकार ने। आप कल्पना करिए, जिस सरकार को सिर्फ 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक ही काम पड़ा है कि काम बंद कैसे किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 संस्थान बंद कर दिए अभी तक, और अभी तक भी वो सूची बन रही है।
1: प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि राज्य में सीमेंट के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कमजोरी और निष्क्रियता के कारण आज सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और आपदा प्रभावितों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, युवाओं के स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, किसानों के कल्याण के लिए किसान आयोग के गठन सहित हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है और हजारों पद भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के CBSE संबद्ध 156 नए विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्ट में सामने आया था कि 156 विद्यालयों में से 18 विद्यालयों में तीनों संकाय उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन CBSE स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। अब लीजिए, श्रोताओं से माफी चाहेंगे, कार्यक्रम विवरण में हमने सदाबहार संगीत की बात की, लेकिन आज है रविवार और आज इस समय श्रोता सुनते हैं गजलें, तो गजलों का लुत्फ उठाइए श्रोताओं। और शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Nexa.
4: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
5: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Nexa.
6: आपके दिल तक पहुंच रही हैं कुछ गज़लें, और धर्मशाला के माध्यम से यानी आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से ये गज़लों का लुत्फ आप उठा रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम की अगली गज़ल लीजिए, अब सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में।

0: गजलों का लुत्फ इस समय आप उठा रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और आपने ये चैनल ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगली गजल इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: इंस्पिरेशन बिल्ट। Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: सुर और अल्फाजों की इस महफिल में एक बार सभी श्रोताओं का फिर स्वागत। गजलों का लुत्फ उठा रहे हैं इस समय आकाशवाणी की आप धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में अब पेशे खिदमत है ये मखमली आवाज तलत अजीज की।

कार्यक्रम मिंजरा सुना करते सारे ही किसान कने बागवान साथी हैं जो कने सारियां किसान भैन जो जी संझा दी बेला दी राम राम कने दिखा मास्टर नहीं आई और ट्याले पर कने हूँ मैं तुहानू जिहड़ी है कुछ एक गल्लां सुनाणियां ने जरूरी कने जरूरी सनेह देने हैं कने जिहड़े हैं सै मिठे मिठे लोक गीत सुनाने हैं तो दिखा साड़ियां किसान भैन जिहड़ियां ने सै खेतां च तां व्यस्त ऐनी हैं कन्ने कन्ने जड़े तिना रोटिये दे काम काज भी जड़े से इस वेले लगाए होंगे बच्चियां पढ़ा दी होंदियां कन्ने कन्ने से साड़ा आकाशवाणी धर्मशाला भी जड़ा से सुना दी होंदियां तां दिखा मतलब कि भैनों अज जड़ा तुहां कई जगह जड़ा से वोट भी पाए होने कन्ने सानू जड़ा से पाना भी बड़े जरूरी हैं कन्ने अपना एक जड़ा से चुनना भी आदमी खरा जड़ा से जरूरी है कन्ने दूजी गल अज अहां करनी है कि साड़ा जड़ा कार्यक्रम है तो इस अहां यह दसना है तुहानू कि साड़े जड़े बन हुंदे तिन्हां जो अहां अग्गी ते जड़ा है जरूर बचाना है दिखा गर्मियों च यह समस्या जड़ी है सै बड़ी ज़्यादा हो ही आती क्योंकि क्या होंगे कि कई बार तो क्या होंगे कि जोड़े साढ़े शरारती तत्व होंगे सै अग बगैरा लगाई देते कने तिसने सारा जंगल जोड़ा साड़ा फकोई आता कने तिसने क्या होंगे तिस च कि कोई पशु पक्षी वगैरह जोड़े हैं जोड़े जानवर साढ़े बोली नहीं सकते पक्षी साढ़े कुछ गलाई नहीं सकते कने तिना ही पीड़ा सू समझना चाहिए कने तिना जो जोड़ा तिसा बने दी अगर तो जोड़ा सै बचा चाहिए कने अगर कुछ कुछ सुझी भी जाता है ऐसा कि साढ़े जंगलों अग लगी हो तो एकदम सांजो सतर्क होई के जड़ा उस जो बुझाने का प्रयास करना चाहिए ता किसान भैनों हूँ अह जड़ा सै तुहानू सुनाना एक प्यारा जिहा लोक गीत सब तो पहले सुनदे हाँ लोक भजन

0: experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: जी दिखा जंगल पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सारे साढ़े जीवन का आधार हैं। ये जमीन ये धरती ये प्रकृति सब कुछ जड़ा साढ़े ने जुड़े है कने सानू इहदा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कने दिखा सब तो वड्डी गल तो यह है कि अजकल एक बड़ा रिवाज चली पिया साड़ी भैनों कि जंगलों बच्चे पार्टी करा दे या बड़े भी जड़े हैं सह पार्टी करा दे तो बोला दे कि भाई अहाँ उपर जाई के जड़ी है सह उत्थू पार्टी करनी है ना। तो तिना गल्लां दा अहाँ ध्यान रखना है तिसते अहाँ परहेज करना है। परहेज तां करना है कि ऐसा करने ते जड़ा है सानू जड़ा है नुकसान हो ही सकता है। उन्हां जो ये समझाना है कने बड़े प्यारे ने समझाना है अहाँ उन्हां झिड़कना नहीं है दसना है इसते नुकसान समझाने हैं कि कियां जड़ा है सह सानू इसते जड़ा है नुकसान हो ही सकता। तो जड़ा है सह अहाँ दे दियां छोटियां छोटियां गल्लां दा ध्यान रखी के जड़ा है अपने जंगलों जो बचाई सकते हैं। तो इन छोटिया छोटिया गलों का हाँ जरूर ध्यान रखना है। कने दिखा चील दे पत्ते होइए या फिर सुखे पत्ते होइए तो तिना जो हाँ जड़ा ऐसे समय समय पर हटाई देना है कि अगर तिसने कुछ अनहोनी हो भी जाती है तो अग जड़ी ऐसे ना फैले। कने हूँ अहाँ टियाले पर अहाँ अपन किसान भैनों का भी ध्यान रखना है तो अहाँ फिर ही चलना एक प्यारे जे लोग की तरफ।

जी भैनों दिक्खा बड़ा ही प्यारा हाँ जेड़ा ऐसा लोक गीत सुनिया कने हुण हाँ फिर ध्यान रखना है अपने बना दा तो दिक्खा बना ते सांजो जेड़ा ऐसा लकड़ी मिलदी कने औषधियाँ चारा होई गया ये सब कुछ सांजो जेड़ा ऐसा बना ते ही मिलता दिक्खा बन साढ़े ताई तो जरूरी है नहीं है साढ़े डंगर बछुआ ताई कने साड़ी दिक्खा रोटिए की जरूरत जड़ी है जैलू साड़ियाँ किसान भैन जड़ियाँ सै चुल्हा जगादियाँ कोई भी भैन जैलू हन सै चुल्हा वगैरह जगादियाँ तो जैलू सै लकड़िए जरूरत पौंदी तो सै जंगले ते कट्ठा करके लियोंदियाँ तो जैलू भी अहाँ जंगले ते लकड़ी लैना जाना है बना च लकड़ी लैना जाना है तो हाँ ध्यान रखना है कि सांजो जड़ा है ताई कोई रुख बूटा ना कट्टना पोए कने जड़ियाँ फालतू दियाँ पईयां लकड़ियाँ वगैरह होंदियाँ तो तिना जो यहाँ कट्ठा करन कने तिना जो यहाँ जड़ा सै रोटी बनाने च या कैसी होर सी चीज़ा च कम्मे च लियोन बन जड़े हैं सै पर्यावरण जो हरा भरा साफ सुथरा रखने च भी जड़ा ऐसा खरी भूमिका निभांदे हैं बना दा कटान सांजो नहीं करना चाहिए यानी कि तिना जो सांजो नहीं कटना चाहिए कने कोई भी अगर कटदा है तो हांजो जड़ा ऐसा जो रोकना चाहिए प्यारे ने समझाना चाहिए कने तिस जो जड़ा ऐसा कटने के नुकसान जड़े हैं तिना ते तीजो अवगत कराना चाहिए तीयो दसना चाहिए कि अगर हाँ पेड़ा जो कटदे हैं बना जो कटदे हैं तो तिसने साड़ी मिट्टी का भी कन्ने जड़ा ऐसा कटाव हुंदा है हाड़ी जड़ी ऐसे मिट्टी रुड़ी आंदी कने मिट्टी है सोगी सोगी साड़ी जड़ी है उपजाऊ मिट्टी भी जड़ी ऐसा रुड़ी आंदी साड़ी है मिट्टी है च बड़े सारे पोषक तत्व हुंदे सै भी कन्ने रुड़ी आंदे तो दिखा बन जड़े हैं साड़े बरखा लियोने च भी सहायक हुंदे तो अगर हाँ बना जो बचांगे ताई साड़ी जड़ी ऐसे पर्यावरण ठीक रहना है कने साड़ियाँ किसान भैन जो भी दिखा जालू रोटी पकाने ताई लकड़ियाँ है कई बारी क्या होंदा कि बना ची सै रोटी पका दियाँ तो तिदा है बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुथी अग वगैरह जड़ी ऐसे नहीं लगना चाहिदी तो अगर हाँ इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा किसान भैनों ध्यान रखगे तो क्या होना कि साढ़े बन भी सुरक्षित रहने अहां भी सुरक्षित रहना साढ़ा पशु धन भी सुरक्षित रहना कन्ने कन्ने साढ़े पक्षी होइए कन्ने कई बार तो क्या होंदा ना इस च बड़ियां सारियां हजारां प्रजातियां जड़ियां सै खत्म होई जांदियां कन्ने कुछ ही ऐसियां होंदियां कि जड़ियां तो विलुप्त होई जांदियां तो सांझो इन्ह छोटिया छोटिया गल्लां दा ध्यान जरूर रखना है कने अहां फिर सुनना एक प्यारा जिहा लोक भजन।

किसान भैनों, इसी कन्नै सारे कार्यक्रम मिंजरां दा समय जिहड़ा ऐ इत्थी संपन्न हुंदा ऐ। जाने ते पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया दा, कन्नै प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, हुण मास्टर निजो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउट डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

0: एनआईडी में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुना करते सारे ही किसान कने बागवान साथी हैं जो मास्टरनी दी संजा दी वेला दी फिरी ते दो हाथ जोड़ी करी राम राम कने दिखा जट्याले पर जेड़े अंसे बड़े टैमे बाद जेड़े अंसे मेरे कने आए हो प्यारू राम जी सुझा दे मिंजो दूरे ते होंदे
1: वही राम राम मस्टाणी जी कने कार्यक्रम किसान वाणी सुना करते सारे स्रोतियां जो कने किसान कने बागवान भाइयों जो कने भैन जो संजा दे वेले दी राम राम और मस्टाणी जी ठीक ठाक हैं तो
0: बिल्कुल बिल्कुल प्यारू राम जी तुहानू भी संजा दी वेला दी राम राम
1: बिल्कुल जी
0: जी प्यारू राम जी तो सब ते पहले तो तुहां ए दसा पे अजकल तुहां कैस कम्मे लगे हो थे
1: देखो खेती बाड़ी वाले काम कार ता हुण कणक दी कटाई आहां करा कर देन क्योंकि आहां तो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है
0: बिल्कुल
1: जौ दी आहां जड़ी गहाई कटाई वगैरह करी ने जड़ा ऐसा वेले होए हुण जड़ा ऐसा खेतर अगली फसल वास्ते जड़ी आहां मक्का वगैरह बीजना उस वास्ते खेतर दी तैयारी लगी करना सारी जड़ी है झाड़ियाँ वगैरह जड़ी उगी होंगी तेना जो कटाई बनाई के खेतर की तैयारी करनी है कने कई क्षेत्र धाना की पनीरी लगाने तैयारियां चली हैं। हाँ जी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल देखा प्यारू राम जी किसान ना है जेड़ा ऐसा सही खेती बाड़ी है ने जुड़े है
1: बिल्कुल
0: कने देखा कार्यक्रम है साड़ा किसान वाणी हाँ अपने साथियों ने जुड़िया गल्ला करनी है ता कुछ एक जेड़े अंसे अजकल कणका दी बढ़ाई है लगे हुए हैं कने कुछ एक जेड़े अंसे बढ़ी चुके हुए हैं है ना दिखा अंबर भी अजकल साथ दे दा कई बारी तो दिखा अंबर भी बड़ा बड़ी डरांदा है ना
1: बिल्कुल कने दिखा मस्टाणी जी गल ही है ना कि आहा बीच जड़ा बीच बीच बड़ी धुप होई आदी ता बरखा होई आदी जिसने ठंडक भी रहा दी कने पानी दी उपलब्धता भी बनी रहा कर दी जड़ी आहा अगेती सब्जियां बीजियां तिना वास्ते बड़ा छाल काम है कने बीच बीच सिंचाई भी होंदे रहे ना तसे फसलां कने किसानां वास्ते बड़ा बढ़िया जड़ा वातावरण जड़ा ऐसे बनी आंदा
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा खेतीबाड़ी सब कुछ जड़ा ऐसे अपने हत्थे है जे आहा खरी मेहनत करगे ना ताहा जड़ा ऐसा खरा मुनाफा कमाई सकदे कने कई वारी प्यारू राम जी मुनाफा तां इतना होई जांदा ना महीने च ही पे साड़ी साले दी जड़ी ऐसे कमाई निकली आउंदी पर फिर भी दिखा ना सानू मेहनत करना तां जड़ा ऐसा बड़ा जरूरी है कने हर कुसी जो जड़ा ऐसा समय रहिंदे मेहनत करना चाहीदी कने जरूर जड़ा ऐसा अपनी खेतीबाड़ी है जो ध्यान ने करना चाहीदा कने दिखा अजकल तां थोड़े बच्चे भी वेहले होंदे नहीं तां क्या हुंदा कि मार्च महीने दिसंबर महीने ते इहनां दा जड़ा ऐसा पढ़ाईया दा बड़ा भारी काम लग्या हुंदा है ना
1: बिल्कुल कने देखो जड़ा ऐसा मेहनताना तां मिली जांदा पर मेहनत भी उस हिसाब ने करना पौंदी ना साल दी मेहनत सानू महीने च ही करना पौंदी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा ना अगर आहा दिखा आहा जिखा बाईयो ता कणक कालू है जे इबे आहा टंगे ने मेहनत नहीं ना करगे कने तिस जो नहीं संभालगे ता सै फसल साड़ी खराब हो जानी है सिर्फ एक तिस दी कढ़ाई नहीं सानू जरूरत है दिखा कटने ते बाद तीयो खरे ने धुप लवाना तिस जो नमी जेड़ी है सै बिल्कुल नहीं होना चाहिए कने तालू तिस जो आहा जेड़ा सै संभाली के रखना है तिस च भी सानू बड़ा ध्यान रखना पौंदा कि तिस च भी नमी नहीं होना चाहिए नहीं तो साड़ी तो सारी फसल ही खराब हो जानी कने दिखा हाँ साल भर जी इस चीज़ बरतनी होंगी तो उइं जी साले की मेहनत जी सू महीने च ही जी करना पौंदी तो यह जड़ा है सू सारे जो ध्यान रखने की बहुत जरूरत है
1: बिल्कुल कने दिखो जड़ा हाँ कई बार परंपरागत बीह भी रखे होंगे तेने जो भी सांझ संभाल करनी है तिस विच और जड़ा है कई बार चीजा मिश्रित हो जाती है तिना जो अलग करना है कने सुखाई बनाई के बढ़िया किस्म की जड़ी है गेहूं होई गए चाहे और आहां दी मौसमी सब्जियां चाहे और चीजा तो तिना जो असा किया रखना है तिना बी कि रखना है सारा यहाँ के किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि बढ़िया सुखाई बनाई के कने बढ़िया चीजा बिच संग्रहित करके तिस चो रखे ता ही अगली फसल वास्ते साढ़े बीज बचते हैं कने कई बार यहाँ के किसान कने विशेषज्ञ भी गलांदे कि बीज जो जड़ा ऐसे उपचार करने बीज
0: जी बड़ी छैल गल तो हमें भी सोचा दी ही कि दिखा बीजे का उपचार भी अहां जरूर दसना है दिखा हुंदा क्या ना कि साड़ा बीज स्वस्थ होगा ता ही साड़ी फसल जड़ी है सै स्वस्थ होनी कने दिखा साड़े बीजे च बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए क्योंकि बीज लाभ्या होगा तो साड़ी फसल क्या निकलनी साड़े बूटे क्या निकलने
1: बिल्कुल
0: तो दिखा प्यारू राम जी हुण अहां जड़ा है सै चलना एक प्यारे दे लोक गीत की तरफ तो वह सुनते एक लोक गीत

0: इसके बाद अहाँ फिर चलने जानकारी की तरफ, तो जानकारी दिया दे कि कद्दू वर्गी जड़ियाँ फसलां होंदी उन्हां दी खेतीबाड़ी कियां कीती जाए, तो आवा सुन दे गलबात।
1: अगर हमारा किसान भाई उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करता है और फसलों का प्रबंधन जो है सही स्वरूप में करता है, तो उसको किसी भी फसल से जो है पैदावार जो है सही स्वरूप में मिलेगी, उसका सही मूल्य मिलेगा। आज हम कद्दू प्रजातीय फसलों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए, इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हम संग हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जो कि प्राध्यापक हैं और पूर्व में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: हमारे सुनने वालों को बताइए कि जब भी हमने फसलों की जानकारी लेनी होती है तो उन्नत किस्मों का जिक्र जो है सबसे पहले आता है। कद्दू पर जाती है फसलें जैसे खीरा हुआ, घिया, तोरी, करेला, चप्पन कद्दू हुआ या दूसरे कद्दू हुए, उनकी उन्नत किस्में जो है कौन कौन सी है?
2: ठाकुर जी, जहां तक कद्दू वर्गीय फसलें जैसे आपने बताया, खीरा, करेला, घिया, समर स्क्वैश, इसको चप्पन कद्दू के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा भी कई सारी फसलें जैसे तोरी है और कद्दू है, ये फसलें भी किसान भाई लगाते हैं। परंतु जो आप कमाई के माध्यम से अगर देखें तो चार फसलें जो हैं वो मुख्य तौर पर किसान भाई जो हैं वो कांगड़ा जिला और इससे लगते जो हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिला हैं उनमें लगाते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर खीरा है, करेला है, घिया है और समर स्क्वैश। इनसे किसानों को काफी फायदा रहता है गर्मियों और बरसात में समय में लगाने से। तो जहां तक प्रजातियों की बात है, आजकल किसान भाई ज्यादातर जो कोशिश रहती है वो संकर किस्मों की तरफ रहती है, हाइब्रिड वैरायटीज की तरफ रहती है। तो मैं हाइब्रिड वैरायटीज की जहां तक बात करूं, जहां तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित किस्मों की बात है, उसमें अगर आप खीरे की बात करें तो उसमें पूसा संयोग और सोलन से सोलन हाइब्रिड 1 और सोलन हाइब्रिड 2, ये दो किस्में जो हाइब्रिड की हैं ये लगाई जाती हैं। और इसके अलावा अभी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से भी आप देखते हैं कि खीरा जो है वो पॉली हाउस में भी एक मुख्य फसल है
1: जी,
2: और बहुत ही कमाई का जरिया है, और उसके लिए एक विशेष प्रजाति की किस्में जो है वो लगाई जाती हैं। तो उसमें जो है वो अभी हमने एक नई किस्म जो है वो हिमपालम खीरा 1 नंबर वो प्रजाति लगाई है। ये प्रजाति जो होती है वो बिना परागण, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है वो फल बनाती है, इसको हम पार्थेनोकार्पिक किस्में कहते हैं।
1: अच्छा।
2: क्योंकि आप देखते हैं कि इसके जो नर और जो मादा फूल हैं वो अलग अलग स्थान पर एक ही पौधे के ऊपर होते हैं, इसका जो पर परागण है वो कीड़ा मकोड़े मधुमक्खी के जरिए से होता है
1: जी,
2: परागण जो है वो मादा के फूल पर पहुंचेगा तभी जो है वो फल बन पाएगा। इसलिए जब हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो उसके अंदर तो मधुमक्खी नहीं होती है, तो अब हमें कैसे फल बनेगा जब वो परागण उसके ऊपर होगा नहीं तो
1: जी।
2: तो इसलिए वो हमें ऐसी किस्में चाहिए वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बना दे। तो ये जो नई प्रजाति की किस्में है, इसमें हिमपालम खीरा 1 जो है, और ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये जो आपकी पार्थेनोकार्पिक जो खीरा की किस्में है, इनका बीज अगर आप बाजार में लें तो एक बीज जो है वो 7 से 10 का होता है। किसानों की हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी कि आप हमें किस्म दो ताकि हमें बीज की जो सबसे अधिक कीमत हम जो वो दे रहे हैं उसका हमारी जो समस्या का समाधान हो। तो ये प्रजाति निकाली गई और एक किस्म और हम निकालने जा रहे हैं। एक मैंने आपको बताया हिमपालम कीराबन, ये गहरे हरे रंग की है, और जो दूसरी किस्म है, क्योंकि कुछ जो हमारे जो कंज्यूमर्स रहते हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनकी डिमांड, ग्राहकों की जो रुझान है वो है हल्के हरे रंग की किस्मों की तरफ भी। तो एक हल्के हरे रंग की प्रजाति तैयार है और वो भी हम शीघ्र ही किसानों तक पहुंचा देंगे। अब उसमें जो कुछ हमारी जो कार्रवाई रहती है कि किस तरह से किस्म को है वो अनुमोदित किया जाता है, वो कार्रवाई रह गई है, अदरवाइज ये किस्म जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो ये किस्में किसान लगा सकते हैं पॉली हाउस के लिए, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका बीज जो है वो किसान खुद बना सकते हैं। जब वो खुद बना लेंगे तो जो कीमत का जो सबसे बड़ा समस्या थी उसका निवारण अपने आप ही हो गया है। ये मैं विशेष तौर पर किसानों के लिए ये बताना चाहूंगा कि अब हमने ये किस्म तैयार कर ली है। जहां तक करेले की किस्मों की बात है, करेले में आप जानते हैं कि इसमें भी एक गहरा हरा रंग और हल्का हरे रंग की दो प्रकार की किस्में, बहुत पहले जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसमें तो यह है कि सोलन हरा सोलन सफेद है, परंतु किसानों का फिर रुझान जो है वो जो हाइब्रिड संकर किस्म की तरफ है। तो आप अपने तजुर्बे के अनुसार जिस निजी कंपनी की आपको लगता है कि हाइब्रिड अच्छा है उसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का हरित और पूसा विशेष, ये दो किस्में भी करेले की बहुत अच्छी हैं, इसी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का हरित और पूसा विशेष, ये दो किस्में भी करेले की बहुत अच्छी हैं। इसी लोकली डांडी बोलते हैं, और एक गोल रहता है जिसको हम घिया बोलते हैं। तो इन इनकी भी, क्योंकि आपके अपने तजर्बे के अनुसार जो लगा सकते हैं, मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा कि जो अनुमोदित किस्में हमारे किताब में हैं आप उन्हीं को लगाएं और जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अनुसरण करेंगे तो आपको फायदा होगा। जहां तक एक समर स्क्वैश जिसको 56 कद्दू कहते हैं, उसमें हमारे एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो रिसर्च स्टेशन है

0: में आप वो एक मिश्रण आता है जिसमें कोकोपीट, परलाइट और बर्मिकुलाइट, कोकोपीट का 3 भाग, बर्मिकुलाइट और परलाइट एक एक भाग जो है वो इसका आप मिश्रण बनाएंगे, और इस मिश्रण को आप उन छेदों में भर करके एक एक बीज हर छेद में अगर आप लगा देंगे तो वो ये उससे ये फायदा रहता है कि आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा तापमान में कभी बहुत तापमान तेज तापमान 25-26 डिग्री तक पहुंच गया था, और आज जैसे मौसम खराब है, बारिश हो गई, ठंडा हो गया, तो कई बार ये जो फरवरी मार्च में जो ये फ्लक्चुएशन रहती हैं तापमान में, इसकी वजह से जो जमाव है बीज का उसमें कई बार समस्याएं आती हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो ये जो हम प्रो ट्रेज रिकमेंड करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप इनको किसी छोटी सी पॉलीथीन शीट से ढक करके और बीज जो है वो अपना पौधा तैयार हो जाता है।
1: जी
0: जब पौधा तैयार हो गया, 2 या 4 पत्ते की अवस्था में आ गया, तो आप वो उस पौधे को जो मिश्रण हमने डाला है उसके साथ उसकी जड़ें जो है जुड़ गई होती हैं, तो वो मिश्रण के साथ ही आप जो है वो जाकर के उसको निकाल करके जो आपने खेत तैयार किया है उसमें जाकर के रुपाई कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो आपका जो एक टाइम जो है कि आपकी क्रॉप थोड़ी जल्दी आ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि जो आपको नुकसान होता था कई बार जो तापमान के बढ़ने और घटने की वजह से, तो वो जो बीज का सड़ना जो है वो कम रहेगा, और आपके जो है बीज में सबसे ज्यादा कीमत किसान वहन करता है तो उसकी जो है वो भरपाई आराम से की जा सकती है। तो और एक अगर ये प्रो ट्रेज नहीं है तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी शादियां हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो है वो आपके पेपर ग्लासेज आते हैं,
1: जी
0: तो उन ग्लासेज को आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये जो कोकोपीट, बर्मिकोलाइट और परलाइट की जो मैंने बात की, ये तो खरीदना पड़ेगा बाजार से, परंतु हमारे पास अपना जो है बर्मी कंपोस्ट है। अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं तो गला सड़ा जो गोबर खाद है, रेत ले लें और मिट्टी ले लें, तीनों को एक एक भाग, एक भाग बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, एक भाग आपका मिट्टी और एक भाग आपका रेत का, इसका मिश्रण उन गिलास में भर दें, या तो प्लास्टिक के हैं या कागज के आ रहे हैं, जो भी कप
1: जी
0: आ रहे हैं उसमें आप ये भर करके और बीज उसमें जो है वो बिजाई कर दें, और उसको किसी ऐसी जगह रख लें जहां से आप उसको ढक भी सकते हैं, और पॉलीथीन शीट अगर मिल जाए, नहीं तो आप अपने बरामदे में भी रख सकते हैं, जनवरी में कर सकते हैं ये काम आप, अब
1: जी
0: तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, तो उससे क्या होगा कि ये जो है फसल जो है वो आपकी जल्दी तैयार होने की संभावना
1: समय
0: है।
1: पूर्व तैयार हो सकती है।
0: और किसान भाइयों को तो मालूम ही है कि जब हमारी फसल जो समय से अगर 10-15 दिन पहले आ जाती है तो उसकी कीमत अधिक मिलती है।
1: जी
0: जैसे अभी खीरा मार्च अप्रैल में, तो उसकी कीमत 25 से 30 इवन 40 रुपए किलो तक रहती है, परंतु
1: जी
0: जैसे जैसे आगे बढ़ता है मई जून में तो 10 रुपए 15 रुपए तक कीमत आ जाती है। तो अगेती फसल तैयार करना भी किसानों के लिए फायदेमंद होता है, तो इस विधि को अपना सकते हैं।
1: जी
0: साथ ही मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे नौजवान हैं, अगर ये प्रो ट्रेज और ये जो कप वाली जो मैंने विधि बताई, इसमें पौधे उगा करके वो सड़क के किनारे रख करके, बहुत सारी आजकल लोग जो है वो इस तरह की
1: पदार्थ लेते
0: लेते
1: हैं।
0: हैं,
1: जी
0: तो वो 1 गिलास 10 से 15 रुपए में वो जो पौधा है वो बिक जाता है,
1: जी
0: तो उससे जो हमारे नौजवान है उनको
1: एक
0: बहुत
1: रोजगार मिल
0: फायदा हो
1: सकता
0: सकता है।
1: है।
0: 2 या 3 रुपया खर्चा आएगा और 15 रुपए में बिक जाएगा, या 10 या 15 रुपए में, तो
1: जी
0: बहुत अच्छी इस तरह आमदनी जो है वो
1: अर्जित की जा
0: हमारे
1: सकती है।
0: अर्जित की जा सकती है।
1: जी
0: बिल्कुल जी,
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे दूसरे फसलों में जो बीजोपचार की विधा रहती है, तो इसको भी बीजोपचार करना
0: हाँ,
1: ठीक रहता
0: किसानों
1: है?
0: को ये हमारी तरफ से सलाह रहती है कि कोई भी बीज आप लगाते हैं उसका उपचार करें, वही जो आपको बहुत सारे पहले भी मेरे साथी आपको बता चुके होंगे, बेवेस्टीन के नाम से एक बड़े बाजार में आराम से ये दवाई मिल जाती है, हमारे जो कृषि विभाग है वो भी इस दवाई को देता है बेवेस्टीन। ये 3 ग्राम 1 किलो बीज की मात्रा के हिसाब से आप इसका उपचार करें, एक पतली सी परत जो है वो पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में आती है, उसकी एक पतली सी परत जो है वो बीज के ऊपर आ जानी चाहिए, क्योंकि ये कई सारे जो हमारे मिट्टी से शुरू होने वाली बीमारियां हैं जिसमें जड़ सड़न रोग बहुत रहता है, उन बीमारियों के लिए इसका फायदा रहता है। तो
1: जी
0: आप जरूर बेवेस्टीन से, और भी कई सारे थेरम है, कैप्टान है, परंतु कई जगह वो मिल जाते हैं कई जगह नहीं मिलते हैं, मात्रा एक ही है, 3 ग्राम 1 किलो के बीज के हिसाब से उपचार करें, बेवेस्टीन जो है वो रेडली अवेलेबल है, तो आप उसको प्रयोग में ला सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो अगर मुख्य खेत में लगानी है, जहां जो हमने रोपाई करनी है, तो उस परिस्थिति में जो है खेत को तैयार करने की विधा क्या रहती है?
0: बाकी फसलों के लिए जैसे हम 2 से 3 जो है वो जुताई करके और खेत को समतल करके, और जब हम खेत को तैयार कर रहे होते हैं, जुताई कर रहे होते हैं, चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से या बैलों के माध्यम से, तो कनाल की बात कर, 10 क्विंटल 1 कनाल में गला सड़ा गोबर खाद, अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो 4 से 5 क्विंटल जो है वो 1 कनाल में आप उसको
1: यानी
0: जो है
1: कि
0: वो
1: केचुआ खाद हो तो 4 से 5 क्विंटल प्रति कनाल।
0: प्रति कनाल, तो
1: जी
0: आप इसको खेत को तैयारी के समय ही डाल दें, और उसके बाद समतल करके फिर आप इसके जो आपको मालूम है कि इसकी जो बेलनुमा ये प्रजातियां रहती हैं, इसके लिए हमारे को जो इसके जिसको हम फासला बोलते हैं पौधे से
1: पौधे
0: पौधे
1: से पौधे
0: और
1: और
0: जो हमारा कतारों के बीच का है
1: जी
0: वो थोड़ा ज्यादा रहता है, लगभग 1 से 1.25 मीटर जो है वो 2 कतारों के बीच में, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ, अलग अलग
1: फसल
0: भी
1: फसल
0: रहता
1: पर
0: है,
1: निर्भर करता
0: निर्भर
1: है।
0: करता है, और जैसे खीरा है तो 75 से 90 सेंटीमीटर पौधे से पौधे का फासला रखना है, और घिये में लगभग ये 1 से 1.25 मीटर के बीच में रहता है, और जो हमारा करेला है उसमें भी

0: की तरह 75 से 90 सेंटीमीटर का फासला रहता है। ये तीन फसलें जो मुख्य तौर पर ये बेलनुमा फसलें हैं, इनमें तो आपने इस तरह से करना है। और जो समर स्क्वैश है, चप्पन कद्दू है, ये हमारी जो है वो झाड़ी नुमा किस्म है, जिसको हम बुश टाइप वैरायटी कहते हैं, तो इसकी बेल नहीं होगी। तो इसका फासला जो वो आप रखेंगे 60 से 90 सेंटीमीटर जो है वो आप दो कतारों के बीच में, और 45 से 60 सेंटीमीटर जो है वो आप दो पौधों के बीच का फासला रखेंगे।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है हमारे कीड़े और बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप होता है, क्योंकि गर्मियों की फसल है तो प्रकोप जो है ज्यादा होता है। तो कद्दू प्रजातीय फसलों में मुख्य मुख्य कीड़े और बीमारियां कौन से जिनका प्रकोप होता है?
0: किसान भाई भली भांति जानते होंगे कि कीड़ों का इन कद्दू वर्गीय फसलों में बहुत नुकसान रहता है। अगर आप जैसे शुरुआत में देखते हैं, जब हमारा जो पौधा है दो या चार पत्ते की अवस्था में आता है, तो एक लाल मक्खी, रेड पंपकिन बीटल जिसको हम बोलते हैं, वो इसके पत्तों को खा जाती है। और अगर उस अवस्था में नहीं आई और हमारा फूल आने प्रारंभ हो गया, तो ये मक्खी उस समय आ जाती है अप्रैल के महीने में, क्योंकि आजकल तापमान ज्यादा है तो मार्च में संभावना रह रही है। अदरवाइज इसका जो प्रकोप रहता है वो अप्रैल के महीने में आता है। तो आप देखेंगे वो लाल छोटी सी मक्खी होती है और बड़ी स्मार्ट मक्खी है, स्मार्ट इन द सेंस कि अगर आप उसके पास जाएंगे एकदम से वो गायब हो जाती है। तो उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु शुरू की अवस्था में आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो जब लाल मक्खी नजर आए तो उसको पकड़ करके मार दें। तो एक नुकसान पत्तों को भी खा रही है और फूलों को भी खा रही है। तो इसका जो आप नियंत्रण कर सकते हैं वो एक साइपरमिथ्रिन दवाई जो है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल करके आप इसका छिड़काव करेंगे तो ये मक्खी जो है वो मर जाएगी।
1: जी, तो ये फूल आने से पहले ही करना पड़ता है?
0: हाँ, जब नजर आएगी।
1: जी, तो इसके अलावा और बीमारियां कौन सी लगती है इसमें?
0: पर इस फल मक्खी का निदान के लिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप एक मेलाथियोन दवाई आती है, उस दवाई को आप हमारे यहाँ मिट्टी के कई सारे बर्तन जिसको हम कूजे बोलते हैं या लोकली भाषा में, आप उसमें पानी डाल करके और ये दवाई उसमें डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ नहीं है तो चीनी डाल दें, और ये जो है पानी जहरीला हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने वो मेलाथियोन दवाई डाल दी, इसको आप अपने खेत में रख दें। इस मक्खी का एक बड़ा अच्छा एक करेक्टर है कि ये जब अंडे देती है उसके बाद पानी पीती है।
1: जी,
0: तो जब पानी का वो हमने बर्तन रखा है वो पानी पिएगी तो मर जाएगी। तो हम स्प्रे ना करके हम इस तरह से भी अपना सकते हैं। और छोटे क्षेत्र में अगर किसानों ने लगाया तो मैं चाहूंगा कि जब शुरुआत में ही इसके नर और मादा फूल, मैंने कहा अलग अलग है, आप इसकी पहचान भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो मादा फूल होता है उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे खीरा बन गया है, डानी वाली जगह डानी बन गई, करेले वाली जगह लग रहा है कि छोटा सा करेला बन गया है, तो वो है मादा फूल। और जिसमें ये नहीं है वो है नर फूल। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मादा फूल है उसको आप कागज का लिफाफे जो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं या कोई थैलियां पड़ी हो तो उसके साथ आप ढक दें, है ना, तो वो बढ़िया सुंदर आकार के खीरे घीये उस लिफाफे के अंदर बन जाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसका निदान कर सकते। जहां तक बीमारियों की संभावनाएं हैं तो इसमें जो मुख्य तौर पर जो बीमारी रहती है वो है चूर्ण सित्ता रोग, जिसको हम पाउडरी माइल्ड्यू बोलते हैं। जी, तो आप देखते हैं कि सफेद रंग का पाउडर जो है वो इसके पत्तों के ऊपर आ जाता है। तो अगर शुरुआती दौर में ही जब इसके जो है वो धब्बे नजर आने प्रारंभ हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैराथेन नाम की दवाई आती है, एक कनाल में जो है वो 30 लीटर का घोल बनाना होता है, तो इसका दवाई का जो मात्रा है वो 15 मिलीलीटर है कि एक पंप में 7.5 मिलीलीटर दवाई ही डलेगी। तो आप इसको डाल करके छिड़काव करें, आप देखेंगे कि एक ही छिड़काव अगर आपने सही समय पर कर दिया है तो इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो जाता है। तो मुख्य तौर पर जो है वो यही एक बीमारी है। दूसरा, आपका फल सड़न रोग भी आता है, परंतु उसका जो कारण रहता है कि आपके खेत में अगर जो ये जो रेड पंपकिन बीटल है या जो फ्रूट फ्लाई है जिसको मैंने बोला फल मक्खी है, जब ये क्या करती है छेद कर देती है, तो वो छेद करेगी तो उससे क्या होता है कि बीमारियां के लिए भी एंट्री मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। अगर हम कीड़ों मकोड़ों को रोकने में कामयाब हो जाए तो शायद ही फल सड़न रोग जो है वो नजर आए।
1: तो ऐसे में जो है ये कद्दू प्रजातियां फसलें अलग अलग पैदावार जो है प्रति कनाल कितनी कितनी मिल सकती है?
0: प्रजाति के अनुसार होता है, परंतु मोटे तौर पर अगर 1 हेक्टेयर में हम बोलते हैं कि 300 से 500 क्विंटल आ जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 क्विंटल जो है कम से कम पैदावार जो एक कनाल से इन फसलों की मोटे तौर पर आ जाती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को जो है कद्दू प्रजातीय फसलों की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी किसान साथियों, तो अहां चलना हुण फुलां दी खेती दे बारे च। तो अज दे समय दी किसानां ताई जिहड़ा है ये बड़ी लाभदायक खेतीबाड़ी है, कने बड़ा लाभदायक ये व्यवसाय है। जे तुहां सही तरीके ने कने नवीं तकनीकां कने बाजारे दी जानकारी होई तो अंजो तो तुहां घट जमीना च भी जिहड़ा है ऐसा खरा मुनाफा कमाई सकदे हन।
3: बिल्कुल, कने इस कम्मां जो अहां खेतीबाड़ी सोगी सोगी जिहड़ा ऐसा करी सकदे हन, क्योंकि इस जो अतिरिक्त समय दे के अहां अतिरिक्त आमदनी जिहड़ी ऐसा कमाई सकदे हन।
2: बिल्कुल जी,
3: पर इस वास्ते जरूरी होंदा हां जो अपनी जिहड़ी है ना भूगोलिक परिस्थितियां कने प्रशिक्षण जिहड़ा भी काम शुरू करिए उस तो प्रशिक्षण लेना कने जगह का चयन करे ना, यदि नहीं है जगह तो कई तो गमले विच भी जिहड़ा ऐसे फुल्लां वगैरह उगाई करी जिहड़ा ऐसे बड़ा सारा

0: मुनाफा कमांदे न,
1: बिल्कुल
0: परंतु
1: जी हाँ चुकिया है कि कन्ने खरे फुलां दा चुनाव जेड़ा ऐसा करना चाहिए जियां जेड़े हाँ जो तुहां ठीक गला दे है कि जलवायु कन्ने मौसम दे अनुसार चुनना चाहिए जियां कि साढ़े इत्थू क्या हुंदा गुलाब हुई गया गेंदा हुई गया कारनेशन हुई गया रजनीगंधा हुई गया लिली हुई गया हिमाचल च पहाड़ी क्षेत्रां च काफ़ी ज़्यादा लाभ जेड़े हैं सह दिंदे हैं कन्ने खरी गुणवत्ता का बीज कन्ने पौधा सांझो लैना चाहिए हमेशा प्रमाणित नर्सरी ते जेड़े हैं सै पौधे लैना चाहिए खरे पौधे ने उत्पादन जेड़ा है सै कन्ने फुलां दी गुणवत्ता दोनों जेड़े हैं सै बधदे हैं कन्ने आधुनिक तकनीकां जो हाँ जो अपनाना चाहिए जियां कि ड्रिप सिंचाई होई गई या फिर पॉली हाउस खेतीबाड़ी होई गई कन्ने कन्ने सांझो जेड़ा है सै जैविक खादा जो जेड़ा है सै अपनाना चाहिए
0: बिल्कुल
1: जी कन्ने दिखा इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा हाँ जो ध्यान रखना चाहिए कन्ने अपने व्यवसाय जो जिहड़ा सै फायदेमंद बनाना चाहिए कन्ने यहाँ अपने हुण किसान साथियों का भी ध्यान रखना है तो हाँ सुनना एक प्यारा जिहा लोक गीत।

0: जाने ते पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रहा
1: विकास पठानिया ने प्रस्तुत करता
0: जितेंद्र पाल सिंह हुण सांझ दोनों जो दिया अनुमति अच्छा जी जय हिंद।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:42 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 69% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए मतगणना जारी, नगर निगम चुनावों के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक, राष्ट्रपति 25 मई को प्रदान करेंगी वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार, 131 विभूतियां होंगी सम्मानित। और भाजपा का आरोप, महंगाई रोकने में विफल रही प्रदेश कांग्रेस सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। इन चुनावों के लिए 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हमीरपुर जिले में सबसे अधिक 78%, जबकि सोलन जिला में सबसे कम 64% मतदान हुआ। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए मतों की नतीजे जारी है और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के चुनाव नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में मंडी और पालमपुर में सबसे अधिक करीब 69% मतदान दर्ज किया गया। इसी तरह धर्मशाला में करीब 60%, जबकि सोलन में 58% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिले के 6 शहरी निकायों में करीब 78% मतदान दर्ज किया गया। बिलासपुर जिले में करीब 73%, शिमला जिले में 77.36%, जबकि सिरमौर जिले में कुल 67.24% मतदाताओं ने वोट डाले। चंबा जिले में 68% से अधिक, कांगड़ा जिले में 74% से अधिक, कुल्लू में करीब 68% और मंडी जिले में 73% से अधिक वोट डाले गए। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला जिले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। सिरमौर जिले में भी नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ का मतदान शांतिपूर्ण रहा। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है।
1: लोगों में उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व की। पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनकी उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में प्रचार के दौरान नाहन नगर परिषद की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, तो इसमें विश्वासनीय थी नहीं, पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जो है नगर परिषद नाहन तो आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगी। उसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है।

0: शिमला जिले में रोहडू की दलगांव पंचायत में चुनाव चिन्हों के आबंटन में नियमों की अनदेखी पर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सहायक निर्वाचन अधिकारी रजनीश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच के दौरान पाया गया कि चुनाव चिन्हों का आबंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, युवाओं के स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, किसानों के कल्याण के लिए किसान आयोग के गठन सहित हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है और हजारों पद भरने की प्रक्रिया जारी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी और बगड़ा थाच में पार्टी समर्थित जिला परिषद सदस्य के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और इस अवधि में केवल संस्थानों को बंद करने का काम किया गया है।
1: आने वाले समय में 1 साल के बाद जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ, और ऐसा बहुमत होगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 3.5 वर्ष का वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल ऐसा बीता है, चारों तरफ तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी। एक तरफ से आपदा के कारण बर्बादी हुई और उसके बाद रही सही कसर जो है वो सरकार ने। आप कल्पना करिए, जिस सरकार को सिर्फ 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक ही काम पड़ा है कि काम बंद कैसे किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 संस्थान बंद कर दिए अभी तक, और अभी तक भी वो सूची बन रही है।
0: राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महासचिव डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से आर्थिक राष्ट्रवाद और विवेकपूर्ण उपभोग के आह्वान ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई चेतना जागृत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सोने के सीमित उपयोग और ईंधन संरक्षण से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी कदम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान व इंजीनियरिंग, जनसेवा सहित व्यापार और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि राज्य में सीमेंट के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कमजोरी और निष्क्रियता के कारण आज सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और आपदा प्रभावितों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के CBSE संबद्ध 156 नए विद्यालयों में कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्ट में सामने आया था कि 156 विद्यालयों में से 18 विद्यालयों में तीनों संकाय उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन CBSE स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत आयोजित अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये भर्ती परीक्षा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं के लिए आयोजित की गई थी। थलसेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि उम्मीदवार ये परिणाम सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 69% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए मतगणना जारी, नगर निगम चुनावों के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। राष्ट्रपति 25 मई को प्रदान करेंगी वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार, 131 विभूतियां होंगी सम्मानित। और भाजपा का आरोप, महंगाई रोकने में विफल रही प्रदेश कांग्रेस सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। शुरुआत कर रहे हैं चंदन दास की इस गजल के साथ।

चंदन दास की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम सबरस में आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पंकज सरावगी का गाया।

0: विविध संगीत का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम सबरस में। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: कार्यक्रम सबरस में अब लीजिए सुनिए ये पंजाबी गीत जिसे गाया है हंसराज हंस ने।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से और विविध संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सबरस में। कार्यक्रम के आखिर में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आवाजी दी हैं अगम कुमार निगम और तुलसी कुमार ने।

अगम कुमार निगम का गाया ये गीत अभी आपने सुना और ये थी कार्यक्रम सबरस की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से अभी सुन रहे थे आप ये कार्यक्रम विविध संगीत का। 8:30 हुए हैं रात के, अब लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात की 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले समाचार संध्या और रात 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
5: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
6: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो आइए आज की इस खास सफर में सुनते हैं मोहित सूरी की ही इस फिल्म आशिकी 2 का ये गीत। इस गीत को आवाजें दी तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने।

बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आशिकी 2 फिल्म से और मोहित सूरी द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। फिल्म निर्देशक मोहित सूरी पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम है। उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों से हम आज इस कार्यक्रम में गीत शामिल कर रहे हैं। श्रोता, उनकी फिल्मों में कई ऐसे गीत होते हैं जिन्हें लोग अपने सफ़र, अपनी मोहब्बत, अपने अकेलेपन से जोड़ लेते हैं। कहा जाए कि मोहित सूरी की फिल्मों का संगीत लोगों की भावनाओं की जुबान बन जाता है, तो इसमें झूठ नहीं होगा। उनकी फिल्मों में अक्सर प्यार अधूरा होता है, लेकिन गीत हमेशा पूरे दिल से होते हैं। आपके रेडियो सेट्स पर है मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत।

श्रोताओं, जब एहसास शब्दों से बड़े हो जाएं तब ऐसे गीत जन्म लेते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम है एक ही कलाकार और आज का कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म निर्देशक मोहित सूरी पर। टी सीरीज में ऑफिस असिस्टेंट काम करने के बाद मोहित सूरी ने अपने निर्देशन की शुरुआत औसत रूप से सफल जहर से की और फिर कलयुग, वो लम्हे, आवारापन, राज द मिस्ट्री और क्रुक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनके रथ द्वारा निर्देशित फिल्में हैं जहर, कलयुग, वो लम्हे, आवारापन, राज, क्रुक, मर्डर 2, आशिकी 2, एक विलन, हमारी अधूरी कहानी, हाफ गर्लफ्रेंड, मंगलम, एक विलन रिटर्न्स और सैयारा। आपके रेडियो सेट्स पर इस वक्त फिल्म सैयारा का ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म निर्देशक मोहित सूरी की फिल्मों की एक और खासियत है, इन्होंने नए गायकों और संगीतकारों को मौका दिया। उनकी फिल्मों का संगीत हमेशा ताजगी लिए होता है और शायद यही वजह है कि युवाओं के बीच उनका संगीत बेहद के माध्यम से जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनकी फिल्मों में संगीत प्यार, दर्द और

द्वारा निर्देशित फिल्मों से रात के 9:30 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से ही रविवासरीय संगीत सभा रिले की जाएगी और 11 बजे हिंदी में रिले करेंगे।

0: अच्छा मैम साहब आ गई, आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, दो कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर मेरे लिए केवल एक कॉफी।
0: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
0: मैम साहब ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
3: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
2: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
2: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
2: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
2: आपके बहुत मित्र हैं।
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
2: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
2: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाज की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
2: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? ओह, कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद?

0: देख सकता हूँ?
1: ये मेरी डायरी है।
0: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
0: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा है। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
0: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीते हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
0: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
0: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
0: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
0: बुरा मान ली। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
0: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
0: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
0: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे, अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज, अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है, जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे? उस आनंद को मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूछे, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बाकी होती।
0: प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: अब मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ तुम क्षण उत्तर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
0: नहीं,
1: जाते हो या नहीं?
0: सांत्वना।
1: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेट, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार के बाद तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूँ ये पूछने का साहस है तुम्हें? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूँ। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देश के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देश का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: सुनो, कहाँ गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था
1: ये सचमुच मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्लीपी से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, तो द्वंद में फंसे मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सच्चत इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छदु, ये छदु है, इस छदु से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।

0: मामा तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
0: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
0: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: शायद असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
0: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगी मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
0: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
4: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
4: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
4: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे, बेचारे परवर्टेड।
4: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
4: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
4: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
4: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
4: सड़कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
4: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज
0: हट जाओ। मैं कैसे हूँ, एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा? ओह, ये माथा तो नहीं है।
0: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत, भाई बधाई।
4: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है। तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिस्टर थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
5: आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
5: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
5: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
5: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
4: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है।
4: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, बिछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में बिछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
4: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
6: जी अभी आया। लाइए।
7: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
5: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
4: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

टू पे अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरी मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar. Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight, Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Dutagat, set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adiyar.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravivasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन

पर के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।